गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए सुबह में। नमस्कार दोस्तों, मैं सताक्षी आपके साथ हूँ और लेकर आई हूँ आपके लिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। जी हाँ, एक नए सुबह के नए एहसास की ताज़ा तरीन बातों के साथ मैं सताक्षी आ गई हूँ आपके लिए इट हैपेंस लेकर, जहाँ बहुत सारी हमारी जिंदगी से जुड़ी बातें मैं आज आपसे करने वाली हूँ। ये बातें किसी एक की नहीं है, ये बातें उन सबकी हैं जो जिंदगी को ढूंढ रहे हैं, जिंदगी को समझना चाहते हैं और जिंदगी की उलझनों से पार पाना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इट हैपेंस की रेडियो ब्रिस्वानी पर। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि आप कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और छोटी मोटी सी प्रॉब्लम से ना अपने मन को निराश मत कीजिए, उदास मत होइए। नया दिन है, पूरी एनर्जी के साथ इसका वेलकम कीजिए और देखिएगा जितनी भी उलझने हैं वो सब धीरे धीरे मिट जाएंगी और आप वापस एक नई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे। शुरुआत करते हैं इट हैपेंस की इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग रेडियो प्रसवानी पर आप है सताक्षी के साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। भाई प्रोग्राम में आगे बढ़े, प्रोग्राम की शुरुआत करें या मेरी और आपके बातों की शुरुआत करें, उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू। जी हाँ, जिनका भी आज है जन्मदिन उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन, चपटे फटे। और देखिए केक मुझे जरूर भिजवा दीजिएगा स्टूडियो में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपका बर्थडे हो और आपके बर्थडे का केक मैं ना खाऊं। हाँ, तो हमारी टीम, पूरी टीम वेट कर रही है, आप प्लीज़ भेजिए। और ज़िंदगी में बस एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी आपकी ज़रूर होगी। जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी, डबल केक भेज दीजिएगा, क्योंकि यार कितने साल हो गए एक दूसरे के साथ और हर साल ये प्यार मजबूत हो रहा है, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। और क्या चाहिए, एक सच्चा जीवन साथी अगर मिल जाए तो चाहे जिंदगी का कैसा भी फेस हो, आप हंसते हंसते पार कर लेते हैं। और आपका साथ कुछ ऐसा ही तो कह रहा है ना। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको आज का दिन। एक दूसरे का साथ यूं ही निभाते रहिए और जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर साथ में चलते रहिए। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। कभी भी उदास या निराश होने की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जरूरत नहीं है। कुछ अच्छा कुछ बुरा हर दिन होता है, कोई भी दिन एक सा नहीं गुजरता है हर किसी के लिए, है ना। किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, लेकिन हमें ये सोचना है कि हो सकता है आज हमारे फेवर में दिन नहीं है तो कल जरूर होगा। और इसी बात के साथ ये अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए। ये गाना खास तौर से मैंने डेडिकेट किया है आप सबको। सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस, मेरे यानी सताक्षी के साथ, और बने रहिए रेडियो प्रसवानी 107.1 AM पर।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: बियॉन्ड व्हाट यू सी, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not

रिचु प्रिस्वानी पर आप हैं सताक्षी के साथ और सताक्षी के साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों, हमें अक्सर लोगों से शिकायत रहती है कि यार इसे ये क्यों मिल गया, मुझे ये नहीं मिला, इसको कैसे इतना सब कुछ मिल रहा है, इसका लक कैसे काम कर रहा है। तो देखिए, जब भी आप ये बात कहते हैं ना कि इसको इतना कैसे मिल गया या इसका लक काम कर रहा है, तो इसी बात में एक्चुअली आप अपना जवाब छुपा लेते हैं। हर किसी को उसकी किस्मत का मिलता है। कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए जिसको जो मिला है वो उसकी किस्मत का है और जो आपको मिला है वो आपकी किस्मत का है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगर मेहनत की जाए, सच्चे दिल से कर्म किया जाए, तो मेरा तो कम से कम यही मानना है और मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि अपनी किस्मत को बदला जा सकता है। तो किस्मत के भरोसे मत बैठिए, लाइफ में बेस्ट दीजिए, आपका लक आपका साथ जरूर देगा और आपका कर्म ही आपकी किस्मत बनेगा। लेकिन दूसरों को देखकर ये फील करना कि इसे ये क्यों मिला है, ये बेकार की बात है। सुनते रहिए इट हैपेंस, आइए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी अगला ट्रैक।

दोस्तों, ये जिंदगी है। इस जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा एटलीस्ट कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। कुछ चीजें आपके अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ आपकी सोच से बिल्कुल अपोजिट होती हैं। इस लाइफ का हर एक मूवमेंट परफेक्ट नहीं होता है। कुछ मोमेंट तो ऐसे होते हैं जो बहुत ही बुरे होते हैं, बहुत ही वाहियात होते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी बना देते हैं। और आपको लाइफ में उन्हीं मोमेंट्स के लिए जीना है, क्योंकि वही मोमेंट्स हैं जो आपको जीने की वजह देते हैं, आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट लाते हैं, आपको आगे लेकर जाते हैं, आपको एक बेटर इंसान बनाते हैं। और आपको ये लगता है कि यार, जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, राइट? इसलिए लाइफ से उन मोमेंट्स को चुराइए जिन्होंने आपको जीना सिखाया है। लाइफ में उन मोमेंट्स को अपना बनाइए जो एक्चुअली आपको लाइफ से मिलवाते हैं, आपको अपने आप से मिलवाते हैं। फिर आप पाएंगे कि जिंदगी वाकई इतनी बुरी नहीं है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। और आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी सुनते हैं ये अगला।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, आप है सताक्षी के साथ आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। तो चलिए सुनते हैं आज के तीन बैक टू बैक ट्रैक्स गानों की हैट्रिक में। जी हाँ, आज गानों के हैट्रिक के तीन ट्रैक्स लेकर मैं सताक्षी आई हूँ इट हैपेंस में, और पहले ट्रैक को आइए एंजॉय करेंगे अभी।

दोनों की हैट्रिक आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रस्वानी 107.01 AM पर। आइए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं कानों की हैट्रिक का ये दूसरा ट्रैक।

गानों की हैट्रिक आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 107.1 FM पर। कौन सा है वो तीसरा ट्रैक और गानों की हैट्रिक का लास्ट ट्रैक है ये सुनते हैं। इसके बाद बहुत सारे गाने इट हैपेंस में हैं जो भी आप सुनेंगे और बहुत सारी बातें भी हैं जो सताक्षी आपसे करेगी, मगर फिलहाल इस ट्रैक के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

रीटू प्रस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ इट हैपेंस। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जो मिल जाता है जिंदगी में वो आम हो जाता है, खास तो वही है जो काश है। हम हमेशा सोचते हैं कि ये हमारे पास होता, काश कि ये हमारे पास होता, काश कि। सो हमें लाइफ में यही लगता है कि काश मेरे पास ये होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, लेकिन वो चीजें जो आपको मिल गई हैं, आपकी हैं, आपकी अपनी हैं, आपके पास हैं, उन्हें आप अक्सर फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपके लिए वो अक्सर आम चीजें होती हैं, आपको लगता है कि तो सबके पास है, मेरे पास है तो कौन सी बड़ी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली सच्चाई ये है कि वो चीजें जो आपके पास हैं, बहुतों के पास उनकी कमी है। लेकिन हम इस बात को जहन से निकाल कर उस काश के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सोचने वाली बात है, आप भी इसको सोचिए और सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ, जी हाँ, रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तो जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, आप एंजॉय करें सताक्षी के साथ इट हैपेंस। दोस्तों, जिंदगी का हर पल हसीन नहीं होता है, हर लम्हे में खुशी नहीं होती और हर पल आपके अकॉर्डिंग नहीं बीत सकता है। लेकिन हाँ, इस जिंदगी में कई पल ऐसे खुशनुमा भी होते हैं जो आपकी जिंदगी को और भी खास बनाते हैं, आपको जीने की वजह देते हैं और आपके अंदर एक नया जज्बा, एक नई मोहब्बत जगाते हैं। बहुत सारे दिन ऐसे गुजरते हैं जब दिल में कुछ टूट जाता है, जिंदगी में कुछ टूट जाता है और आपको एक निराशा लगती है। आपको लगता है कि यार बस यहाँ पर मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर अंत होता है, एक्चुअली शुरुआत वहीं से होती है। जहाँ पर जिंदगी रुकती है, वहीं से आपको एक नई दिशा मिलती है, एक नई शुरुआत मिलती है। सो जब भी लाइफ में ये लगे कि अब जिंदगी रुक गई है, थम गई है या अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये समझ लीजिए कि जो होना था वो हो गया है। मगर अब जब कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लग रहा है कि सब खत्म है, जिंदगी में नई शुरुआत।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हर साल जंगलों विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो।

तस्वीर सोशल मीडिया वायरल हो गया ने पहला जिथे काफी बल्कि मस्कुलर लुक विच नजर आते हूं सोहेल खान ने काफी स्लिम लुक ले लिया है ते मसल्स भी काफी लूज हो गए ने। हालांकि सोहेल खान दे इस नवे लुक ते तरीफा घट ते उन्होंने ट्रोलिंग ज्यादा चलनी पई है। सोहेल खान जदो अलायंस विच आए ना शो दे विच ता उस तो बाद एक तम बहुत ज्यादा सुक गए तो कंपेरिजन वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से छा गए कि पहला की सी हूं की बन गए है उस तो बाद उन्होंने काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। जिम्मे तुम पहला दसिया कि बहुत सारे एक्टर्स है उस तरह सोहेल खान कले एक्टर नहीं है जिन्होंने वजन घट करके ट्रोलिंग जिन्होंने चली हैगी बहुत सारे है उन्होंने बारे दस दया तुम एक करके पहला सुनो एक गीत

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Excuse me sir, sir एक problem हो गया।
4: क्या?
3: आपकी model नहीं आ रही।
4: क्यों?
3: सर आपकी mobile पे उनका phone आ रहा है, तो वो नहीं आएगी।
4: ला फोन दे।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन।
1: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
3: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: टू एवरीवन ट्यूनिंग इन टू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज आलिया।
7: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी से।
8: टू एवरीवन ट्यूनिंग इन टू रेडियो ब्रिस्वानी, दिस इज शाहरुख खान।
9: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

0: एनर्जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी वंसर वन एम ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जिहड़ा नाम हैगा वह है राम कपूर का। टीवी की दुनिया विच कामयाबी के झंडे गड्ढण दे नाल नाल राम कपूर ने फिल्मों विच भी खूब नाम कमाया हैगा। राम कपूर ने हालांकि इस पूरे समय के दौरान अपना बॉडी वेट लगभग सेम रखा। उन्हें दी पहचान इसे लुक दे नाल बन चुकी सी, पर अचानक जद उन्होंने वजन घटाया तो उन्होंने वजन तो घट गया, नाल ही चेहरा भी काफी अलग दिखने लग पिया। लोग उन्होंने इस नवे लुक दे नाल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए ते काफी ज्यादा ट्रोल किया। हाल फिलहाल दे विच लॉकअप 2 दे विच नजर आए सी।
1: और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hoon unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do, jisse wo apni pasand ka gift le lenge.
4: Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
3: Acha, wo kya?
4: अब तुम घर बैठे न्यू जीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हां जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो दुस्वानी वन सन वन एम ते चार चे संदेश अलग दिन आज बने हुए अगला नाम है जी करण जौहर दा बॉलीवुड दी दुनिया वे दा एक अजिहा नाम जिन्होंने ना सिर्फ सानू बहुत सारिया यादगार फिल्मा दितियां बल्कि हिंदी सिनेमा नू कितों तो कितों पहुंचाया। करण जौहर नू असी शुरू तो एक खास लुक कैरी करते देखा है पर फिर जब उन्होंने अपना वजन काफी ज्यादा घटाया ना तो उन्होंने ओजिम्स ते मुंजारो वर्गे ड्रग्स लैन का आरोप लग गया। करण जौहर फंकी लुक दे नाल नाल बहुत पतले दुबले लुक दे लई काफी ज्यादा ट्रोल होए सी। खैर करण जौहर ट्रोल अक्सर हुंदे रहिंदे ने पर लुक नूं लैके पहली बारी होए सी।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: अभी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हां जी रेगो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसोनी 107.1 FM ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राजकुमार राव दा। ता बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव नु वी वार वार वजन घटाउण ते वधाउण दी वजह नाल ट्रोलिंग चलनी पई सी। वजह यह है कि राजकुमार राव दी कद काठी उन्नी विशाल नहीं हैगी, मतलब इन्नी वड्डी नहीं हैगी कि वह इस तरह के ट्रांजेक्शन तो बाद भी नॉर्मल लगन। जद उन्होंने वजन कुछ फिल्मों के लिए घटाया तो काफी दुबले लगन लगे, फिर जद वधाया तो काफी मस्कुलर ते हैवी दिखन लगे। यही वजह है कि राजकुमार राव भी वेट लॉस के लिए ट्रोलिंग चल चुके आ।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉग से बात कर। इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं।

0: दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
0: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

ना बदला में

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम।

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 kids अंडर 16 ईयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं, दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। इह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji ho expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है. मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है. स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं. प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज. रिंग करे प्रकाश मेनन को. फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, कैरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 1-33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-111-27-035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असीं 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असीं होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी अर्जुन निव्या के साथ। टन टन टन टन टन। जी हाँ, आप लोग बोलोगे व्हाट इज इट टन टन टन टन। स्वागत मैं कर रही हूँ आपका जबरदस्त। और उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आज फ्राइडे है, इतना ही काफी है, इतना ही बोलना काफी है कि आज फ्राइडे है। तो सबसे पहले हैप्पी फ्राइडे आप सबको। जी हाँ, फ्राइडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और फ्राइडे को एंजॉय करने, मजे से इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए जल्दी से आ जाइए, क्योंकि हम आपको अच्छा अच्छा फील करवाने वाले। ऑलरेडी आप अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन हम आपको और भी ज्यादा अच्छा फील कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसका नाम है नई जन। नहीं जाना मेरी माए में उदे नाले नहीं जाना। जी हाँ, अगेन सबसे पहले गाना नहीं होगा, गाने से पहले भी कुछ होगा। जी हाँ, गेस कीजिए। अरे आप इतने टाइम से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, थोड़ा तो गेस कीजिए। चलिए, अगर आप हमारे नए लिसनर हो तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि उससे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, उससे पहले कि हम आपको जबरदस्त सा गाना जो है वो आपके लिए प्ले करें, उससे पहले हम यहाँ पर एक हेल्दी रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, विच इज डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। मतलब आपको मनोरंजन करना आपका तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन आपको हेल्दी रखना भी हमारा कर्तव्य है, और उसी का पालन हम सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे पहले डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से शुरुआत होगी। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते शुरुआत होगी अब प्रोग्राम की। और जैसे मैंने कहा था कि गाना है नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माँ मैं उदे नाल नहीं जाना, मतलब नहीं जाना मेरी माँ, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, ये है इसका मतलब। जी हाँ, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें। नेहा भसीन का ये गाना आप सबके लिए।
1: नहीं जाना मेरी माँ, मैं देना।

गाना है. ऑफ कोर्स अगर आपको श्रेया साथ मिलेंगे तो आपको गुरा जबरदस्त सा गाना सोनू निगम की आवाज में, श्रेया घोषाल की आवाज में, प्रीतम के म्यूजिक में और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको मिला है और ये गाना खूबसूरत है. जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं मौसम की तरफ, क्योंकि ऐसा ना हो रहा हो जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो जाए, और इसीलिए हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि क्या कह रहा है मौसम अगले दो दिन के लिए और आज के लिए भी. जी हाँ, तो सबसे पहले 29 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 24.9 डिग्री सेल्सियस के करीब है. फील आपको हो रहा है 24.6 डिग्री सेल्सियस के करीब. जी हाँ, ये तो हुई आज के दिन के टेम्परेचर की बात. वहीं अगर रात की बात की जाए तो 16 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे, यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाला है. नो चांसेस ऑफ बारिश जैसे मैंने पहले ही कहा था, और सूरज जो है वो भी खिला खिला रहा, और अगर बात की जाए एयर क्वालिटी की तो वो भी एकदम फेयर है. चलिए आज की बात तो हो गई, अब जरा चलते हैं कल यानी कि सैटरडे एंड संडे को. कल जो है वो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने के आसार हैं, लेकिन बारिश के आसार हैं जो कि 60% है, और 60% चांसेस कोई कम नहीं होते. सो या इसी के साथ संडे की बात की जाए तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विद 30% चांसेस ऑफ रेन. मतलब अगर आप आउटिंग का प्लान बना रहे थे तो शायद कल वो इतने अच्छे से पूरा ना हो पाए, लेकिन संडे को पूरी तरह से पूरा हो सकता है, जितना कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे. सूरज भी खिला खिला होगा और अगेन थोड़ी गर्मी भी होने वाली है, और इसके अलावा बारिश मुझे नहीं दिख रही है तो आप बाहर तो एटलीस्ट. जी हाँ, तो मौसम का हाल ये है वीकेंड के लिए, और अब जरा चलते हैं आपको सुनाते हैं एक और जबरदस्त सा गाना जो कि आपको काफी

0: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिआ क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों फ्राइडे है तो फ्राइडे वाले गाने अब मैं पूरी तरह से शुरू कर रही हूँ और आप भी डांस करने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब वो जो लचक आपकी कमर में आनी चाहिए इन गानों को सुन के वो तो पक्की बात है। मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप लोग बोलोगे हैं निव्या तुम चाहते हो हमारी कमर में मोच आ जाए। अरे नहीं, वो मोच वाला नहीं कह रही मैं, लचक कह रही हूँ कि मतलब थोड़े ठुमके तो लगाना बंद है क्योंकि फ्राइडे का मौसम आ गया है, फ्राइडे का दिन आ गया है और फ्राइडे के गाने भी आ गए। लेकिन उससे पहले आपकी तरफ से कौन से गाने आ रहे हैं उसका प्रबंध अगर कर लिया जाए तो बात बन जाए। आप लोग बोलोगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट।

वेल, जो मेरे पुराने लिसनर्स हैं, जो हमारे प्रोग्राम को हमेशा सुनते हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप अपने फेवरेट गाने हमारे इस प्रोग्राम में फरमाइश कर सकते हो वाया कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज। जी हाँ, सो कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है और वो नंबर है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश, और अगर किसी को डेडिकेट करके स्पेशल भी फील करवाना चाहते हो तो वी आर गोना हेल्प यू विद दैट। जल्दी से आ जाइए यहाँ पर हमारी तरफ से, थोड़ी सी साड्डी गली में चल पड़ते हैं, मतलब साड्डी गली मतलब मेरी गली में। अब मेरी गली में क्या हो रहा है आइए जरा आपको बताते हैं।

पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर. Talk to bottom marks, तुझे दिए मैंने 10 out of 10. क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन. भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू, कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली.

0: भाई मुंडिया ते कुड़िया दी गल बन गई, लेकिन यहाँ पर एक बात किसी बड़े इंसान ने कही है, एनवेनाई से बड़े मतलब काफी सक्सेसफुल इंसान ने, जो कि गौर करने वाली है। और हमेशा हमने देखा होगा कि लोग जो हैं वो धीरे धीरे अपनी हेयर लाइन को जो है वो खो देते हैं, उनकी हेयर लाइन जो है वो श्रिंक करनी शुरू कर जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम लोग या तो बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं या तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, ये आपने डॉक्टर से भी सुना होगा, जब भी बाल झड़ते हैं अगर आप किसी डर्मेट के पास जाते हो तो दे आर लाइक, आपने कभी किसी चीज का स्ट्रेस तो नहीं लिया हुआ है? जी हाँ, दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे आस्क यू। सो यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स सीईओ जो है डेविड सोलोमन, उन्होंने लिटरली जोक बना दिया इस चीज का। उन्होंने कहा कि हैविंग अ फुल हेड ऑफ हेयर कुड मीन यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। आई मीन ये इंसान खुद तो मतलब लगा रहता है, मतलब काम करता रहता है। एंड अगेन, इनके सर पे खुद भी बाल नहीं है, सो आई गेस दैट इज द रीजन, बिकॉज ही वर्क्स क्रेजी। एंड ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो सीरियसली ली जाती है वॉल स्ट्रीट में। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके सर पे पूरे बाल हैं, मतलब आप तो काम कर ही नहीं रहे हो। अगर आपके सर पे बाल नहीं है फिर ही आप मेहनत कर रहे हो, आप सक्सेस को छूने की कोशिश, सक्सेस को पाने की कोशिश तभी कर रहे हो अगर आप लोगों के सर पे बाल नहीं है। सो आप मुझे बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? नहीं, बताइए। और मैं आपको बता रही हूँ कि वॉल स्ट्रीट में जितने भी लोग काम करते हैं, दे वर्क क्रेजी, दे वर्क लाइक क्रेजी, एंड दे आर लाइक ओके, मतलब 95 आर जो है वो काम करते हैं वो एक एक हफ्ते में, मतलब इससे भी ज्यादा कभी कभी। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना खतरनाक जो है वो सारा का सारा वो टाइम शेड्यूल वहां पर रहता है। और ऐसे में वहीं का सीईओ कह रहा है कि अगर आपके सर पे बाल हैं तो आप ज्यादा मेहनत कर नहीं रहे हो, बरखुरदार। वेल, हमको मेहनत करनी होगी, हम कर लेंगे, हमको बाल भी प्यारे हैं भाई, ठीक है। तुमका तो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन हमको इतनी मेहनत करनी है जिससे हमारा स्ट्रेस। एंड यू नो, बाल इज नॉट, बाल चलिए छोड़ भी दीजिए, बाल जो है वो सुपरफिशियल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है मेंटल हेल्थ। तो भैया, बहुत ज्यादा मेहनत करने से और ये क्रेजी आर्ट्स करने से ना सिर्फ हमारे बाल झड़ेंगे बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ हिल जाएगी। सो बाल झड़े तो कोई नहीं, लेकिन मेंटल हेल्थ हिली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सो सीईओ गोल्डमैन, प्लीज आपको मैं इतना ही कहूंगी कि अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं है तो अपने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। और दोस्तों, इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बट क्या आपको भी लगता है कि अगर किसी के सर पे बाल नहीं है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी की हेयरलाइन श्रिंक हो रही है, तो वो बहुत जम के काम कर रहे हैं और बाकी लोग नहीं कर रहे? या टेल मी अबाउट योर थॉट्स। जी हाँ, यहाँ बात, एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।
1: हेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ दोस्तों। और बहुत ही दिलचस्प चीज हुई है, लेकिन दिलचस्प से ज्यादा खतरनाक चीज हुई है। जी हाँ, सो बेसिकली F-35 स्टेलर जेट, जो कि सबसे एडवांस जेट माना जाता है, एडवांस कैटेगरी के जेट्स में माना जाता है अमेरिका, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास था और वो गया हुआ था, मतलब वो जा रहा था अमेरिका की तरफ अपनी यू नो मेंटेनेंस के लिए, अपने चेकअप्स के लिए, वो गलती से चाइना में पहुंच गया। गलती से नहीं पहुंचा एग्जैक्टली, और चाइना ने उसके कुछ पार्ट्स को और कुछ टेक्नोलॉजी को कर लिया है जब्त। जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोग बोलोगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। जी हाँ, तो बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के पास था, लेकिन ये अमेरिका की तरफ जा रहा था, और बेसिकली ये दूसरा रूट लेने वाले थे, लेकिन इनको लगा कि अच्छा ये वाला रूट लेने के बजाय हम हांगकांग की तरफ से जाते हैं, और वहां पर जब ये हांगकांग की तरफ से गए तो वहां पर ही ये गड़बड़ हुई है। मतलब आप खुद सोचिए कि सबसे स्टेलर जेट जो है उनमें से एक माना जाता है F-35 जेट, और उसकी टेक्नोलॉजी, काफी सारी टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो वेपन टेक्नोलॉजी है उस जेट की, और कैसे उसका जो है कॉकपिट और बाकी सारी टेक्नोलॉजी काम करती है, वो सब देख लिया है चाइना वालों ने। जी हाँ, मतलब चाइना वालों ने F-35 को देख लिया और पूरी तरह से उसके टेक्नोलॉजी को भी देख लिया, ऐसा कहना है चाइना वालों को। अब चाइना वाले बहुत खुश हैं, दे आर लाइक कि क्या अनाड़ी लोग हैं, क्या अनाड़ी लोग हैं। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा ये माजरा क्या है। वेल, माजरा बहुत फनी है, इसको और भी डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बट अभी के लिए मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही फनी सिचुएशन है, और फनी के साथ साथ बहुत गड़बड़ भी सिचुएशन है, बिकॉज चाइना जो है वो अगेन बहुत सारी चीजें ऐसे करता रहता है, वो दूसरों की प्राइवेसी में झांकने की कोशिश करता है। जी हाँ, और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं कंट्रीज की उनमें झांकने की कोशिश करता है, और जासूसी करता हुआ भी बहुत बार पाया गया है चाइना को। लेकिन F-35 जेट जो कि खुद ही चाइना को सर्व कर दिया गया प्लेट में रख के, वो बहुत ही ज्यादा फनी चीज है। जी हाँ, यहाँ पर एक गाना मैं आपको सुनाऊंगी, फिर थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि क्या माजरा है यहाँ पर। ये गाना जो कि है जबरदस्त आप सबके लिए।

0: and roll to the beat of the dough. Come on, shake your body, rock and roll to the beat of the dough.
1: जी हाँ, तो दोस्तों मैंने कहा था ना, मैं आपको बताने वाली हूँ दुनिया की सबसे क्रेजी डिलीवरी, जो कि गलत हो गई और गलत होने की वजह से काफी नुकसान अमेरिका का यहाँ पर हो गया है और होने वाला है। अमेरिका सबका नुकसान कर रहा है, सो इट्स हाई टाइम अमेरिका का नुकसान भी होना चाहिए था। हुआ कुछ ऐसा है कि F-35 स्टेलर जेट जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिपेयर होने के लिए और मेंटेन करने के लिए, उसकी जो सर्विस करने के लिए वो वापस अमेरिका जाने वाले थे। तो जो लोग जो वहां से उसे लेकर जाने वाले थे वो लेट हो गए और जो रास्ता वो अपनाने वाले थे वो था ताइवान से होकर, साउथ कोरिया से होकर सैन फ्रांसिस्को का। लेकिन उन्हें लगा कि हम लेट हो गए हैं तो हम थोड़ा टाइम बचा लेते हैं और वो हांगकांग से होकर जाने की कोशिश करने लगे। उन्हें लगा कि हांगकांग से होकर चल पड़ते हैं, टाइम बच जाएगा। और तो वहां से ईमेल्स पहले ही आ चुकी थी कि वो रास्ता बिल्कुल मत लेना। लेकिन बेसिकली ये मिस्टेक हुआ है, यूपीएस मिस्टेक, जो यूपीएस वाले थे वहां पर उन्होंने इसको देखा ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं कि ऐसी कोई मेल आई है और यहां पर हमको इस रास्ते से नहीं जाना है। एंड दैट्स व्हाट दे डिड, दे वेंट टू हांगकांग और वो हांगकांग से होकर जाने वाले थे और वहां पर चाइना लिटरली टुक पोजीशन ऑफ दोज पार्ट्स। सो इट वॉजंट एग्जैक्टली F-35 जेट पूरा, बट उसके कुछ पार्ट्स थे जी हाँ, जिसमें कि ऑफकोर्स वेपन बे, कॉकपिट कैनोपी और भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब चाइना ने उन चीजों को स्टडी कर लिया होगा, बिकॉज चाइना जिस हिसाब से तेज है और वो तेज तरारी दिखाता है, उसको जरूरत नहीं है इससे ज्यादा टाइम की। और वो लिटरली F-35 जेट के पार्ट्स, जो कि लिटरली वेपन बे वाला जो पार्ट था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मतलब उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो किसी भी तरह से किसी भी ऐसी कंट्री के पास नहीं जानी चाहिए जो आपकी टेक्नोलॉजी को स्टडी करके आपके लिए कुछ नया ही तैयार कर सकती है, एंड दैट इज चाइना फॉर अमेरिका। सो ऑफकोर्स ये डिलीवरी जो कि कहीं और होने वाली थी, किसी और रास्ते से जाने वाली थी, रास्ता गलत चुन लिया, यूपीएस मिस्टेक हो गई और चाइना को F-35 जेट के पार्ट्स सर्व होकर मिल गए प्लेटर पे। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
13: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
14: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
13: अच्छा, वो क्या?
14: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
14: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
15: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निःशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
16: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, मुझे तो इतना पता चल गया है कि इंसानों के शौक जो हैं वो बहुत भांति भांति के हो सकते हैं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कितनी सारी चीजें हैं इस दुनिया में जो आपको ऐसा फील कराती है, अरे ऐसा भी होता है, अरे ये भी हो रहा है, अरे ऐसा भी कर रहा है कोई। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें आप फील कर सकते हो जब आप इंटरनेट पे जाते हो, मतलब सोशल मीडिया पे जाते हो। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको सुन के आपको ऐसा लगेगा, रियली निविया, रियली यू आर नॉट लाइंग राइट, मतलब ये सच में हो रहा है। या ये सच में हो रहा है। सो जंपिंग स्पाइडर्स जो है वो बन गए हैं इंटरनेट का न्यू फेवरेट हाउस पेट। आप लोग बोलोगे व्हाट, जंपिंग स्पाइडर्स? Care to explain, Nivya? Yeah. Sure. जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं। So, jumping spiders जो है वो normal spiders से different है। इनका size छोटा होता है, ये jump करते हैं और इनकी आंखें जो है वो बहुत ही प्यारी सी, cute सी, expressive होती हैं। और ये अपने मालिक को देखते रहते हैं और इस वजह से ये favorite बन गए हैं बहुत सारे लोगों के। बहुत सारे लोग अपना pet बना रहे हैं इन jumping spiders को। जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल स्पाइडर्स की तरह नहीं होते हैं। नाउ अब मैं इतना ही पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों को स्पाइडर्स फोबिया है। जी हाँ, स्पाइडर फोबिया। अगर आप ये सुन रहे हो तो आप लिटरली कांप जाओगे। है वो मतलब लोगों को और कोई काम नहीं बचा है, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय सब कम पड़ गया है कि अब इनको स्पाइडर भी पालना है। वेल पीपल कैन लिटरली डू एनीथिंग। और हमारे यहाँ पे आजादी भी तो है, इंसानों के पास आजादी है, वो किसी भी चीज को ओन कर सकते हैं, किसी भी चीज को पेट बना सकते हैं। और ये जंपिंग स्पाइडर्स जो हैं, वो उन्हीं में से एक है। लेकिन ये चीज ज्यादा स्पेशल इसलिए हो गई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू द पेट पेरेंट। जंपिंग स्पाइडर पेट पेरेंट, उनके हिसाब से ये बहुत क्यूट होते हैं और इनकी आईज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है, बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है और बहुत ज्यादा बड़ी होती है इनकी बॉडी के हिसाब से। और वो हमेशा अपने मालिक को, अपने ओनर को देखते रहते हैं और इस वजह से वो फेवरेट बन गया और उनको नाम भी दे दिया गया है, एंड दैट इज वेब पपीज। नाउ वेब पपीज तो डेफिनेटली उनका नाम बनता है क्योंकि स्पाइडर्स का काम क्या होता है, वेब बनाना। जी हाँ, लेकिन यहां पर वेब पपीज उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि वो इंटरनेट का फेवरेट बन गए हैं। सो वो वेब पे फेवरेट पेट बन गए हैं लोगों का। सो वो वेब पपीज भी हैं क्योंकि वो स्पाइडर हैं, और वो वेब पपीज भी हैं क्योंकि वो इंटरनेट का फेवरेट पपी बन गए हैं अपेरेंटली। जी हाँ, सो ये वाली चीज हुई है और ये बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मुझे नहीं पता था इससे पहले इसके बारे में, और जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी आई वाज लाइक आर यू सीरियस, बट देन अगेन मुझे हर भांति भांति के जीव जंतु से प्यार है और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कुछ लोगों को ऐसी चीजें पसंद है तो पसंद है भाई। मैं कहती हूँ इंसान सबसे खतरनाक चीज है, बाकी सब शरीफ है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। मैं पढ़ रही थी आई वाज लाइक आर यू सीरियस, बट देन अगेन मुझे हर भांति भांति के जीव जंतु से प्यार है और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कुछ लोगों को ऐसी चीजें पसंद है तो पसंद है भाई। मैं कहती हूँ इंसान सबसे खतरनाक चीज है, बाकी सब शरीफ है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जो भी देखे यही पूछ है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

0: आएगा।
1: जी दोस्तों, और इसी के साथ आगे की ओर बढ़े, उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करनी है। वेल ऑफ कोर्स आगे की ओर बढ़कर ही इम्पोर्टेंट चीज करनी है और थोड़ी सी सीरियस बातें करनी है आपसे, और सीरियस खबरें भी आपको बतानी है। और उससे आपको पता चल ही गया होगा कि खबरों का सिलसिला शुरू हो रहा है एंड हम आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं, बताने वाले हैं, जो कि हो रही हैं इस दुनिया में और हर जगह। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में धधक रहे हैं जंगल, मलेशिया फिलीपींस से लेकर सिंगापुर तक धुआं और धुआं। जी हाँ, इंडोनेशिया के कई इलाकों में कुछ हफ्तों से जंगलों में आग लगी हुई है। इससे उठने वाला धुआं पूरे देश के साथ साथ पड़ोसी देशों मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस तक फैल गया है। धुएं और धुंध की स्थिति को हेज भी कहा जाता है और इसकी वजह से सिंगापुर में वायु प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। मलेशिया के कई राज्यों में अधिकारियों ने स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। इस साल इंडोनेशिया में जंगलों में आग लगने का मौसम पिछले कई वर्षों के सबसे खराब दौर में से एक है। इसकी प्रमुख वजह किसानों और कंपनियों की ओर से वनस्पति साफ करने के लिए अपनाया जाने वाला अवैध स्लैश एंड बर्न तरीका है। इसमें जमीन साफ करने के लिए पेड़ पौधों को काटकर जलाया जाता है। ये तुलनात्मक और पर तौर पर सस्ता है। जुलाई से सितंबर के बीच इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आग से जुड़े सांस संबंधी संक्रमण के करीब 1.75 लाख मामले दर्ज किए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल अल नीनो की असाधारण तेजी से सूखे की समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया गया है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और वहीं सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हूती विद्रोहियों के हमले, भारतीय दूतावास ने भी जारी की है एडवाइजरी। हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले के बीच भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से सतर्क रहने और जरूरत के मुताबिक घरों के अंदर रहने को कहा है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने, जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने और स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को मौजूदा घटनाक्रम से जुड़ा कोई भी वीडियो या खबर प्रसारित करने या रिपोस्ट करने से सख्ती से बचने की सलाह भी दी गई है। दूतावास ने कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेदा स्थित वाणिज्य दूतावास के साथ साथ VFS कंपनी के जरिए दी जाने वाली सेवाएं भी सामान्य रूप से जारी हैं। जरूरत पड़ने पर आगे की जानकारी और एडवाइजरी जारी की जाएगी। जी हां, दूतावास ने यह भी बताया कि प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र PBSK की 24 घंटे उपलब्ध हेल्पलाइन चालू है। इसका स्थानीय टोल फ्री नंबर 8002471234 है। इससे पहले एयर इंडिया ने सऊदी अरब के रियाद के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स 10 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दी हैं। रियाद में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस खबर की पुष्टि भी की थी।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सासों की माला पे सिमरू मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन, सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय Aussies माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय Swadesh Foods। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ अमेरिका ने एक नया बॉम्ब फोड़ दिया। वेल, इट्स नॉट द रियल रियल बॉम्ब, बट द टेक बॉम्ब। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, आई एम गोना टेल यू। जी हाँ, सो इन्फोसिस समेत इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के बचाव में बोले हैं जेरी वांस। जी हाँ, सो बेसिकली अमेरिका ने कुछ कंपनियां जो कि आईटी कंपनीज है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी आईटी कंपनीज है, वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनीज, एंड जो कि इंडिया से आती हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनको H-1B वीजा ना मिले और जितने भी पेंडिंग वीजाज थे उनको भी रोक दिया जाए, उनको भी पास ना किया जाए, उसके बारे में कुछ कहा है। जी हाँ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वांस ने 8 टेक्नोलॉजी कंपनियों को ग्रीन कार्ड अमेरिका के परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन कार्यक्रम से बाहर करने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने आलोचकों पर आरोप लगाया है कि वे कंपनियों को सस्ते विदेशी श्रमिकों की लगातार उपलब्धता बनाए रखने में मदद करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद प्रमिला जयपाल की ओर से इस फैसले पर सवाल उठाए जाने के बाद वेंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लगता है कि समाजवाद का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को सस्ते श्रमिकों की कभी खत्म ना होने वाली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से लड़ना है। जी हाँ, इस बयान के बाद 8 टेक्नोलॉजी कंपनियों को निलंबित करने के फैसले पर राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। इन कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, विप्रो, HCL और कैप जेमिनी है। जी हाँ, कैप जेमिनी शामिल है। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने इन कंपनियों को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। विभाग ने इस कार्रवाई के पीछे कई संघीय जांचों के जारी होने का हवाला दिया है। अब ये बहुत बड़ा झटका है, बेसिकली ये जो सारी कंपनीज है जो कि इंडिया की हैं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और इसका असर मार्केट पे भी है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, आरसी के साथ खबरों की बात हो रही है। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में, लेकिन 3 नवंबर से पहले हमला नहीं करेंगे। अरे एंथ्रोपिक का आईपीओ जो आ रहा है, आपको तो पता ही है कि जब जब ऐसा कुछ होता है तो सब कुछ अच्छा जाना शुरू हो जाता है, सारी कॉन्वर्सेशंस अच्छी जाती है, बिल्कुल विवाद सुलझने वाला होता है। और जब फिर हो जाता है वो सब, तो फिर उसके बाद फिर से जो है वो तलवारें निकल आती हैं दोनों तरफ से। जी हाँ, सो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश ईरान के साथ सकारात्मक दिशा में बातचीत आगे बढ़ा रहा है। हालांकि ईरान पर 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव से पहले कोई हमला नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस्लामी गणराज्य ईरान के साथ हमारी बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं सभी को यह साफ कर देना चाहता हूं कि ईरान आर्थिक और सैन्य दोनों ही मोर्चों पर बेहद बुरी हालत में है। इसके बावजूद नाकेबंदी पूरी तरह लागू रहेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से रिकॉर्ड मात्रा में तेल गुजर रहा है। सिर्फ कल रात ही 2.2 करोड़ बैरल तेल वहां से गुजरा और इसमें एक भी बैरल ना तो ईरान से आया और ना ही ईरान गया। उन्होंने कहा हम अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले किसी भी समय ईरान पर हमला नहीं करेंगे। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर इस साल 28 फरवरी को ऑपरेशन फ्यूरी के तहत ईरान पर हमला किया था। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर ये सारा का सारा विवाद तभी से शुरू हुआ था। फरवरी, आप देख लीजिए अक्टूबर आ गया है। अक्टूबर कह रहे थे बस 2 दिन का है, 2 दिन का है, 2 दिन, इतने दिन हो गए हैं और इस चीज का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, क्योंकि अपेरेंटली तेल गैस सब कुछ महंगा हो गया। इनफैक्ट फर्टिलाइजर्स भी महंगे हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एलन मस्क का किंगडम बढ़ाने में जरा आपत्ति है कुछ लोगों को. मतलब एलन मस्क का किंगडम जो है वो बढ़ने से रुक गया है, क्योंकि अपेरेंटली इंडिया में स्टारलिंक को अभी भी इजाजत नहीं मिली है चलने की. रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जा रहा है पूरी तरह से, सिक्योरिटी को चेक किया जा रहा है, और ये कहना है इंडियन गवर्नमेंट का. बट एज ऑलवेज एलन मस्क के साथ जब भी ऐसा होता है वो रैंट करते हैं ट्विटर पर, एंड दैट्स व्हाट ही डिड. जी हाँ, दैट्स व्हाट ही डिड. एंड द फनी थिंग इज कि जब वो ये रैंट कर रहे थे तो इंडिया के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी बड़े ही अच्छे से कहते हैं कि यू नो व्हाट मस्क, हमेशा ऐसा ही होता है, इधर हमेशा से ऐसा ही होता आया है, तुम तो अभी अभी आए हो, हमेशा से इधर ऐसा ही होता आया है. अरे भाई, चोर चोर मुसेरा भाई. नाउ आई एम नॉट सेइंग राहुल गांधी इज अ चोर और एलन मस्क इज अ चोर, बट वो मोर भी नहीं है, सो आई मीन दे कैन बी चोर, राइट? सो द थिंग इज कि एलन मस्क जो है वो अगेन फिर से richest पर्सन तो वो थे ही, वो ट्रिलियनर जो है वो फिर से बन गए हैं. लेकिन यहाँ पर स्टारलिंक जो है, जो उनका बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट स्टारलिंक इज, जैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको अभी तक पता ही होगा, स्टारलिंक जो है वो एक सैटेलाइट डाटा जो है वो कंपनी है जो कि सैटेलाइट से डाटा यानी कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है, और ये बहुत सारी कंट्रीज में करती है, कुछ कंट्रीज में नहीं करती. वेल ऑफ कोर्स रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ब्राजील और इंडिया में ये करने की कोशिश कर रही है पिछले 5 साल से, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अभी भी इनको इजाजत नहीं मिली है चलने की. एलन मस्क कहते हैं कि मैं इंडिया के विलेजेस को जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच पाया वहां पे पहुंचाना चाहता. अरे भाई, जितना रेट तुम्हारे स्टारलिंक का है ना, वो रेट इंडिया के विलेजेस के लोग कभी पे नहीं कर पाएंगे. तो या तो तुम उनको स्टारलिंक फ्री में दे दो, फिर तो समझ में भी आता है, अदरवाइज इंडिया में जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी बहुत सस्ता इंटरनेट उन्हें दे रही है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम बताओ तो सही. तुम रैंट कर रहे हो और फिर ऑपोजिशन लीडर इंडिया के आते हैं और वो भी कहते हैं यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, तुम तो इधर आए हो, अभी आए हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा. नहीं, हमेशा से होता हुआ है. दिस इज सो फनी. अब इमेजिन द हिपोक्रेसी कि स्टारलिंक जो है वो इंटरनेट मतलब एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से इंडिया में, और वहां पर जो इंडियन कंपनीज अमेरिका के साथ काम करती हैं वहां पर उनकी ऐसी की तैसी करके रखी है. कभी उनका H1B वीजा जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, कभी पेंडिंग में रख दिया जाता है, अब तो कह दिया कि अब तो मिलेगा ही नहीं. जी हाँ, मतलब 6-7 कंपनियां उनकी वाट लगा दी है. तुमको इंडिया में एंटर करना है, जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लिटरली बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया तुम्हारे अंदर जो कर रहा है वो भी उसको करने नहीं मिलेगा. तुमने टैरिफ लगाए वो तो अलग बात है, लेकिन तुमको सब कुछ करना है, तुम्हें अपनी जगह पे कुछ नहीं करने देना. लाइक हिपोक्रेसी की भी हद होती है. एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वो तो मतलब ही इज द फनीएस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ इन ऑल द बैड सेंस. मतलब क्या ही चल रहा है. यू नो व्हाट व्हाट ही डिड, जेडी वांस बोलते हैं कि यू नो व्हाट, हम ये पूरी की पूरी कंपनीज जो है जो इंडिया से आती है, जो ये आईटी कंपनीज है जो कि हमारे लोगों के साथ गलत करती आ रही थी, बिकॉज इनके लोग जो है यहां पर आकर नौकरी करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती. अरे भाई, तुम्हारे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि कोई और तुम्हारे घर में आकर नौकरी ले रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारे में गड़बड़ है, उसमें नहीं जो कि आकर तुम्हारे घर में नौकरी ले रहा है. या दैट इज द रीजन. फिर वो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल 6,000 अमेरिकियों को निकाल दिया और उसके बदले उन्होंने 6,000 इंडियंस को H1B वीजा पर रख लिया. अरे भाई, उसका मतलब भी वही है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हारी बजाय कोई और आके करेगा. एंड दैट्स व्हाट हैज बीन हैपनिंग. बट ये लोग ये बस इस बात को नहीं मानेंगे. बट एलन मस्क को तो डेफिनेटली इजाजत नहीं मिलनी चाहिए. यू नो व्हाट द थिंग इज कि इंटरनेट और स्टारलिंक जहां भी जाता है वहां पे उपद्रव करता है. आई एम नॉट सेइंग कि स्टारलिंक इज बैड कंपनी, बट द थिंग इज कि जहां पर आपकी कंपनी या फिर आपकी कंट्री की सिक्योरिटी किसी और कंट्री के उसमें जाती है, एंड इंटरनेट इज अ वेरी बिग वेपन. अभी के लिए तो इंटरनेट इंडियन गवर्नमेंट बंद भी कर सकती है जब वो चाहे, कुछ भी ऐसी गड़बड़ होती है शांति के लिए या किसी भी चीज के लिए. बट अगर वो चला गया स्टारलिंक के पास, फिर ऐसा ना हो पाएगा. जी, और फिर क्या हो पाएगा? वेल, ट्रंप कहेंगे, एलन मस्क करेंगे, और वो हमेशा से ऐसा ही होता आया है. जी हाँ, सो आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट उन्हें इजाजत ना ही दे. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
6: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-111-27-035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-111-27-035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-111-27-035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
8: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
9: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
8: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
9: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
10: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करने का वक्त आ गया है, एंड ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट फ्राइडे की मेन चीज, मूवीज। क्या क्या हैं आपके लिए इस हफ्ते देखने वाली, जी हाँ, थिएटर्स में स्पेशली थिएटर्स में. सबसे पहले दृश्यम 3 लिटरली क्रशिंग ऑल द रिकॉर्ड्स और बहुत ही अच्छी कमाई कर रही है, क्योंकि इसका जो बिल्डअप रहा है वो 2015 से बनता है. मतलब 2015 में पहली दृश्यम आई थी, दूसरी दृश्यम आती है 2022 में, और तीसरी दृश्यम यानी कि जो फाइनल पार्ट है दृश्यम सीरीज का वो आता है इस साल. सो ये तीनों फिल्म जो है वो एक स्टोरी को दिखाने की कोशिश करती है विजय, और बहुत ही अच्छी कमाई कर रही है क्योंकि इसका जो बिल्डअप रहा है वो 2015 से बनता है. मतलब 2015 में पहली दृश्यम आई थी, दूसरी दृश्यम आती है 2022 में, और तीसरी दृश्यम यानी कि जो फाइनल पार्ट है दृश्यम सीरीज का वो आता है इस साल. सो ये तीनों फिल्म जो है वो एक स्टोरी को दिखाने की कोशिश करती है विजय सलगांवकर, जो कि एक व्यक्ति है.

अगर आप देखना चाहते हो तो जल्दी से देखने जाओ, क्योंकि दृश्यम द कंक्लूजन इज इन थिएटर्स। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने दृश्यम सीरीज की एक भी मूवी नहीं देखी है देन गो वॉच इट बिकॉज इट्स अ मस्ट। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और मूवी है जो कि आप देख सकते हैं एंड दैट इज वीवान। जी हाँ, द वीवान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा आपको एंटरटेन करने आए हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से, क्योंकि जॉनर है इस मूवी का एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर। मतलब बहुत कुछ आपको मिलने वाला है और वो जो मिस्टीरियस, वो जो फैंटेसी वाली चीजें हैं वो भर भर के आपके लिए इसमें है। नाउ आप इस मूवी को देख सकते हैं, 2 हफ्ते हो गए इस मूवी को रिलीज हुए। टिकट खिड़की पर नॉर्मल काम कर रही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा काम किया है, बट ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बुरा काम किया है। जी हाँ, इसी के साथ हनुमान अंश जो कि लिटरली गोइंग स्ट्रॉन्ग स्टिल, आप देख सकते हैं उसको। नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित है ये मूवी और कैसे वो नीम करोली बाबा बने, कैसे उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को इंस्पायर किया और हाँ उन्हें अपना literally inspiration बना दिया। जी हाँ, यहाँ पर एक और मूवी है जो कि आप देख सकते हो, which I'm gonna tell you about, लेकिन पहले आप ये सब देखिए और जरा एक और गाना सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगी हॉलीवुड में क्या क्या है आपके लिए देखने लायक। जी हाँ,

दोस्तों, इस गाने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? हाँ हाँ, सोचिए सोचिए, इस गाने के बाद आपको एक पर्टिकुलर सी चीज फील होनी चाहिए, सोचिए। अरे आपने नहीं सोचा तो मैं ही आपको बता देती हूँ, इस गाने के बाद आपको गरबा फील होना चाहिए। जी हाँ, गरबा फीलिंग इज इन द एयर, बिकॉज गरबा जो है वो आ रहा है, ऑलमोस्ट आ गया है। और उसके लिए कपड़े, घाघरा चोली, घाघरानी चोली और ऑफकोर्स खूबसूरत ज्वेलरी एंड वो मूव्स। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गरबा नहीं भी करना आता तो भी जाइए जाइए, घुसिए वहां पर, पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए आपके मूव्स अगर सिंक नहीं भी हो रहे हैं तो भी हो जाएंगे। गरबा इज लाइक दैट, मतलब अगर आपको नहीं भी आता है ना, आप दो बार फॉलो करोगे किसी को, तीसरी बार आपको खुद ही आ जाएगा। दैट्स हाउ गरबा इज। बट वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट गरबा राइट नाउ, बिकॉज वी आर गोना टॉक अबाउट मूवीज। और वो मूवीज में से एक है हॉलीवुड मूवीज, वेल ऑफ कोर्स डोरेमोन, या डोरेमोन कैसल ऑफ द अंडर सी डेविल। अगर आप लोग डोरेमोन सुजुका नोबिता के फैन हैं, देन गो एंड डोंट गो अलोन, टेक योर किड्स विद यू, बिकॉज अदर देन दैट यू डोंट हैव मच मूवीज टू सी। जी हाँ, इसके अलावा और कोई मूवी ऐसी नहीं दिख रही है मुझे जो कि आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो, या आप द वीवान भी देख सकते हो अपने बच्चों के साथ, दृश्यम भी देख सकते हो, लेकिन ये वाली पर्टिकुलरली आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हो। एंड डोरेमोन इज द लव ऑफ एवरी किड, राइट? आई मीन लेट्स बी रियल। इसी के साथ यहाँ पर अगली मूवी जो आप देख सकते हो और वो क्या है, वेल ऑफ कोर्स एवेंजर्स एंड गेम इन कोर। एवेंजर्स सीरीज की ये मूवी जो कि पहले ही आ गई है काफी, इसको फिर से री रिलीज किया गया है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर डूम यानी कि डूम्स डे की तैयारी हो रही है। जी हाँ, एवेंजर्स डूम्स डे। अब इसके अलावा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रीटी मच एवरी वन नोज अबाउट दिस मूवी। कौन नहीं जानता एवेंजर्स डूम्स डे, जो कि रिलीज होने वाली है जल्द ही, और उसके लिए हाइप क्रिएट करने के लिए और फिर से लोगों को उस माइंडसेट में लाने के लिए एवेंजर्स एंड गेम इन कोर को री रिलीज किया गया है। देखिए और फिर तरोताजा कर लीजिए उन सारी वाकियों को, उन सारी चीजों को जो कि हुई थी एवेंजर्स एंड गेम में, और थोड़ा सा कुछ और भी आपको इसमें मिलने वाला है एक्स्ट्रा। एंड वी लव एक्स्ट्रा थिंग्स, खासकर एक्स्ट्रा चीज, राइट? आई मीन टॉकिंग अबाउट चीज चीज। जी हाँ, यहाँ पर हार्ट ऑफ द बीस्ट कैन ऑल्सो बी द मूवी यू कैन गो फॉर। जी हाँ, और ये अगेन इट्स अ हॉलीवुड मूवी, इट्स अ एक्शन एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर मूवी। एंड ये एक व्यक्ति के बारे में है जो कि अपने रिटायर्ड डॉग के साथ एक जगह पर जाता है, प्लेन क्रैश हो जाता है, ऑलमोस्ट उन्हें लैंड करना पड़ता है, और फिर उसके बाद उन्हें एक जगह पर सर्वाइव करना पड़ता है जहां पे ना इंसान है, ना बंदा है, ना बंदे की जात, और वो कैसे होता है सारी की सारी चीज, वही इसकी कहानी है। सो गो फॉर इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ अदर मोमी, जी हाँ, अदर मोमी इज ऑल्सो अ मूवी जो कि हॉरर और थ्रिलर है। सो मेरे हॉरर फैंस के लिए, जिनको चाहिए होता है कि ओ ई ये करना होता है थिएटर्स में, उनके लिए भी मूवी है। जी हाँ, यू कैन गो फॉर इट। एंड या इट्स अ मूवी विच इज हॉरर एंड थ्रिलर जो कि आपको पूरी तरह से सर्व करने वाली है। इसके अलावा एक वैरायटी मूवी भी है जो कि एन हाथवे, डकोटा जॉनसन के साथ है। और लेट मी टेल यू, मूवी पता नहीं कैसी है, लेकिन इन दोनों की जो केमिस्ट्री है जो कि इन्होंने प्रमोशंस के दौरान दिखाई है, वो इनसेन है। सो या, ये सब आप देख सकते हैं। इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि आपको लिटरली बहुत ही खूबसूरत फील करवाने वाला है। व्हाई एम आई सेइंग दैट, वाला आप गाना सुनिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा।

जी हाँ दोस्तों, रफी साहब की गायकी बाकमाल, लाजवाब और लिटरली इसको जो भी कहा जाए, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जी हाँ, रफी साहब की गायकी जो है वो हमेशा से अव्वल रही है, और ये हमने नहीं, बड़े बड़े सिंगर्स ने कहा है, बड़े बड़े एक्टर्स ने कहा है, फिर चाहे वो राजकुमार हो, फिर चाहे वो राजेंद्र कुमार हो, फिर चाहे वो शमी कपूर हो, या कोई भी हो, मतलब इतने सारे एक्टर्स, उन सब ने रफी साहब की गायकी को अव्वल का। एक किस्सा है जो बड़ा ही खूबसूरत है, और ये किस्सा है 70 के दशक का, और ये राजेंद्र कुमार और रफी साहब का किस्सा है। जी हाँ, ये वो वाला वक्त था जब राजेंद्र कुमार की फिल्में हिट पे हिट, हिट पे हिट और हिट पे हिट होती जा रही थी, और इसकी वजह से उनका दूसरा नाम जुबली कुमार पड़ गया था। जी हाँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जितनी भी मूवीज में राजेंद्र कुमार काम करते हैं वो हिट हो जाती हैं, सो उनका नाम जुबली कुमार रख दिया गया। अब फिर एक मूवी थी जिसकी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए राजेंद्र कुमार को जाना था रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जी हाँ, उस मूवी का वो गाना जो था, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जो म्यूजिक जो बनाया था वो शंकर जयकिशन ने बनाया था, गाने वाले थे रफी साहब। अब उस वक्त सिंगर्स के लिए जो है वो एक्टर्स वहां पर जाया करते थे, स्टूडियोज में उनके साथ बैठा करते थे जब सिंगर्स वो गाना गाते थे। तो राजेंद्र कुमार टाइम से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाते हैं और बड़े ही अच्छे से रफी साहब को देखने लगते हैं। रफी साहब जो अंदर स्टूडियो के अंदर होते हैं, वो शीशे में से जब राजेंद्र कुमार को देखते हैं तो बड़े ही अच्छे से कहते हैं कि अरे वाह, मेरा लकी हीरो आ गया, मेरा हिट हीरो आ गया, अब तो गाना पूरी तरह से हिट होने वाला है। ये सुनकर राजेंद्र कुमार बड़े ही अच्छे से कहते हैं कि रफी साहब, गाना तो आपकी गायकी की वजह से हिट होता है, हम तो सिर्फ एक्ट करते हैं, लिप सिंक करते हैं, गानों के हिट होने में जो भी योगदान है वो आपका है। ये सुनते ही रफी साहब के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, और उसके बाद वो उस रिकॉर्डिंग को करते हैं, और फिर उसके बाद बाहर आके राजेंद्र कुमार के गले भी मिलते हैं। ये थी वो बात, मतलब कितना प्यारा होता था ना जब सिंगर्स को इतना ज्यादा सराहा जाता था, आर्टिस्ट को इतना सराहा जाता था, और बड़े बड़े एक्टर्स भी उन्हें मानते थे कि नहीं, ये जो भी है इसमें जितना योगदान सिंगर्स का है, उनकी आवाज का है, उतना और किसी का नहीं। जो है यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन खूबसूरत होने वाला है, एंड कैन यू गेस कि मैं कौन सा गाना प्ले करने वाली हूँ, थोड़ा तो गेस कीजिए। तुमसे ओ हसीना, जी हाँ, सुमन कल्याणपुर जी का ये गाना आप सबके लिए।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ जॉय मुखर्जी और रफी साहब का साथ भी बहुत ही ज्यादा खुशनुमा रहा है। जी हाँ, और जॉय मुखर्जी की पिक्चरों की आवाज जो है वो रफी साहब माने जाते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि जॉय मुखर्जी की जितनी भी हिट पिक्चरें हैं उनमें रफी साहब के ही गाए हुए गाने हैं। अब ये किस्सा है उस वक्त का जब जॉय मुखर्जी की एक पिक्चर जो कि थी हमसाया, उसके लिए रफी साहब आते हैं, जॉय मुखर्जी साहब से मिलते हैं, अपना गाना गाते हैं और बड़े ही अच्छे से अपनी फीस लेकर चले जाते हैं। अब ये किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता है। जी हाँ, पिक्चर लगती है थिएटर्स में लेकिन चल नहीं पाती, मतलब फ्लॉप हो जाती है। जब रफी साहब को इसके बारे में पता चलता है कि जॉय मुखर्जी की जो नई पिक्चर है वो चल नहीं पाई है, तो वो एक दिन उनके घर जाते हैं और बड़े ही अच्छे से उनके साथ बैठते हैं और बातों ही बातों में वो जो फीस का लिफाफा जॉय मुखर्जी ने उन्हें दिया था उसको निकालते हैं और जॉय मुखर्जी के हाथ में रख देते हैं। जॉय मुखर्जी कुछ नहीं बोल पाते, वो इमोशनल हो जाते हैं और वो सिर्फ वो लिफाफा ही ले पाते हैं। रफी साहब सोचते हैं कि एक इतना अच्छा इंसान जिसकी खुद की मूवी ही नहीं चल पाई और वो ऑलरेडी नुकसान में है, उससे मैं कैसे फीस ले सकता हूँ। जी हाँ, और इसीलिए वो उनके घर जाते हैं, उनसे गपशप में करते हुए वो उनके हाथ में वो फीस वाला लिफाफा रख लेते हैं। और ये किस्सा जॉय मुखर्जी बाद में शेयर भी करते हैं। ये किस्सा इतना प्यारा था जो कि बताता था कि रफी साहब गायक तो बहुत ही जबरदस्त थे पर वो इंसान भी बहुत ज्यादा जबरदस्त थे। मतलब काइंड होना और लोगों के लिए एम्पथी दिखाना दो अलग अलग चीजें हैं। आप काइंडनेस किसी के लिए भी दिखा सकते हो लेकिन एम्पथी इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। जी हाँ, मतलब ऐसे समय में जब उनको जरूरत है अपने आप का फायदा छोड़कर दूसरों का नुकसान होने से बचाना, ये अपने आप में एक कला थी। जॉय मुखर्जी कहते हैं कि रफी साहब की गायकी की वजह से मेरी पिक्चरें बहुत हिट रहीं और वो चीज मुझे हमेशा याद रहेगी, लेकिन हम साया के ना चलने के बाद जो ये किस्सा था इसने मेरी आंखों में रफी साहब की इज्जत और बढ़ा दी थी। जी हाँ, यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, इस खूबसूरत से माहौल को अब हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि अब जाने का वक्त हो गया है। घड़ी इशारा कर चुकी है, वो कह रही है कि निव्या शर्मा चलिए ठीक है अब आप जाइए क्योंकि हमारे पास और बहुत सारी चीजें करने के लिए, हमारे पास गेट टुगेदर्स हैं अटेंड करने के लिए, फ्राइडे की पार्टी है करने के लिए और वीकेंड पे बहुत सारी मस्ती है करने के लिए। सो चलिए ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ आपको आज के लिए, अब आपसे मिलना होगा कल यानी कि ऑफकोर्स टॉप 10 हॉट 10 में, और उसके बाद फिर आपसे मिलना होगा कब, वेल इवनिंग वाइब में। तो इवनिंग वाइब में मंडे को मिलेंगे और टॉप 10 हॉट 10 में कल यानी कि सैटरडे को मिलेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेल मजे करने हैं क्योंकि इट्स फ्राइडे और फ्राइडे को मजे नहीं किए तो क्या किया बीड़ू, क्या किया। बस कीजिए मस्ती, माहौल बनाइए, खाइए और जबरदस्ती चीजें कीजिए। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। ये रहा गाना लास्ट।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर
0: प्लेस टू कॉल होम।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन लायंस के कोच क्रिस फैगन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ब्रिस्बेन लायंस AFL टीम के मुख्य कोच क्रिस फैगन ने 10 साल के शानदार सफर के बाद अपने कोचिंग करियर को अलविदा कह दिया। प्रशंसकों ने उन्हें भावुक विदाई दी और इसी के साथ नए कोच की तलाश भी शुरू हो गई है। वहीं ब्रिस्बेन रोर विमेंस टीम को मिला नया प्रायोजक समर्थन। ब्रिस्बेन की प्रसिद्ध फुटबॉल टीम ब्रिस्बेन रोर विमेंस को बड़ी सफलता मिली है। ओसेंको कंपनी ने अगले 2 सीजन के लिए टीम के साथ अपनी स्पॉन्सरशिप पार्टनरशिप को आगे बढ़ा दिया है। वहीं ब्रिस्बेन सबर्ब्स में वीकेंड वेदर अपडेट। ब्रिस्बेन शहर और आसपास के इलाकों में इस वीकेंड मौसम सुहावना रहने की उम्मीद जताई गई है। तटीय हवाओं के कारण तापमान सामान्य रहेगा, जो बाहर घूमने के लिए बेहतरीन है। वहीं ब्रिस्बेन काउंसिल ने शुरू की नई ग्रीन पाथ मुहिम। शहर को और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए ब्रिस्बेन काउंसिल ने लोकल पार्क्स और साइकिल ट्रैक्स की मरम्मत और विस्तार का नया काम शुरू किया है, जिससे साइकिलिंग करने वालों को काफी आसानी होगी। वहीं ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तकनीकी सुधार। ब्रिस्बेन की लोकल बसों और ट्रेन नेटवर्क के डिजिटल टिकटिंग सिस्टम में सुधार किया गया है, ताकि सुबह के पीक आवर्स में यात्रियों को लंबी लाइनों से मुक्ति मिल सके। वहीं ब्रिस्बेन के सांस्कृतिक सेंटर में शुरू हुआ आर्ट फेस्टिवल। दक्षिण ब्रिस्बेन के कल्चरल सेंटर में स्थानीय कलाकारों के लिए एक विशेष आर्ट और म्यूजिक फेस्टिवल की शुरुआत हुई है, जिसमें वीकेंड पर भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, विरोध प्रदर्शन को लेकर सतर्कता। जी हां, आज दिल्ली में विपक्ष के मार्च को देखते हुए शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है और कुछ रास्तों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। इसी के साथ गुजरात के कच्छ में सुबह सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ। गुजरात के कच्छ में आज तड़के एक दुखद घटना हुई, जहां 2 गाड़ियों की टक्कर में 7 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भारतीय आईटी शेयर्स में उछाल, बाजार में बड़ी हलचल। अमेरिका द्वारा ग्रीन कार्ड नियमों में किए गए नए बदलावों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में आज सकारात्मक माहौल देखा गया। खासकर देश की बड़ी आईटी कंपनियों के शेयर्स में 4% तक की बढ़त दर्ज की गई, जिससे निवेशकों के चेहरे पर खुशी देखी गई। वहीं दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर सिनेमा जगत में शोक। भारतीय सिनेमा के बेहतरीन और कद्दावर अभिनेता नाना पाटेकर जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उनके जाने से पूरे बॉलीवुड और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। वहीं उपचुनाव के नतीजों पर टिकी सबकी नजर। देश के 5 अलग अलग राज्यों के विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना आज जारी हो गई है। शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं और स्थानीय राजनीति में इसे काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम टीम की बड़ी कार्रवाई। बेंगलुरु के कैंपेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए ट्रॉली के जरिए हो रही सोने की तस्करी को नाकाम कर दिया है। 2 यात्रियों को हिरासत में लेकर लगभग 6.5 किलो सोना जब्त किया गया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले अमेरिका ने आईटी कंपनियों के ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप पर लगाई रोक। अमेरिकी प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी 8 बड़ी टेक कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप प्रोसेस को अस्थायी रूप से रोक दिया है। वहीं मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव, उड़ानों पर पड़ा असर। मिडल ईस्ट क्षेत्र में सुरक्षा हालात बिगड़ने की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने एहतियात बरतते हुए रियाद जाने वाली अपनी फ्लाइट्स को रद्द या डायवर्ट कर दिया है। वहीं एआई के गलत इस्तेमाल पर एंथ्रोपिक का नया नियम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने अपनी सुरक्षा नीतियों को कड़ा कर दिया है। अब उनके एआई मॉडल क्लॉड के साथ किसी भी तरह के हिंसात्मक या गलत व्यवहार करने वाले अकाउंट्स पर तुरंत बैन लगाया जाएगा। वहीं एलन मस्क को मिला अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान। व्हाइट हाउस में आयोजित एक समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एलन मस्क को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया है। उन्हें तकनीकी क्षेत्र में असाधारण योगदान के देने के लिए ये सम्मान दिया गया है। वहीं एआई मैप ने भटकाया रास्ता कनाडा में रेस्क्यू ऑपरेशन। कनाडा में एक 16 साल का लड़का एआई द्वारा बताए गए ट्रैकिंग रूट पर चल रहा था, लेकिन रास्ता गलत होने के कारण वो पहाड़ी पर फंस गया। राहत की बात ये रही कि रेस्क्यू टीम ने समय रहते पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं फिनलैंड में भारतीय पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपनी जापानी प्रतिद्वंदी को हराकर सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं पूरी तरह से खेल जगत की तरफ। जी हां, सबसे पहले भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा T20 मुकाबला। आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। भारत पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। वहीं आईसीसी रैंकिंग्स में श्रेयस अय्यर की लंबी छलांग। शानदार फॉर्म में चल रहे भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग्स में 18 पायदानों की बड़ी छलांग लगाते हुए 7वां स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच शुरू। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच आज डर्बन के मैदान पर शुरू हो गया है। साउथ अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा चोट के कारण इस मैच से बाहर हो चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड टीम को भारत दौरे से पहले लगा झटका। भारत के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से पहले न्यूजीलैंड टीम के 2 मुख्य खिलाड़ी मार्क चैपमैन और जॉक फॉलिक्स चोट के कारण बाहर हो गए हैं। वहीं कोलकाता डर्बी में मोहन बागान की शानदार जीत। IFA शील्ड के फाइनल मुकाबले में मोहन बागान ने अपने चिर प्रतिद्वंदी ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर 22वीं बार इस खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे मंडे को, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटिफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302288009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
3: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
4: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
3: ऐसा क्या खास है वहाँ?
4: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
3: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
4: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
6: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
7: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
6: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
7: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रीज सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रीज सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तों अलावा होर वी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

நீ உடாடாதே.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

जी आनू जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो पे सोने वन सर वन एम जी आप चे संदेश अलग दिन आप बने हुए। देखो एक्टर प्रोड्यूसर सोहेल खान दे ड्रास्टिक वेट लॉस दिया तस्वीर ते वीडियो ना सोशल मीडिया ते वायरल हो गया ने। पहला जिथे काफी बल्की ते मस्कुलर लुक विच नजर आते सी उथे हुण सोहेल खान ने काफी स्लिम लुक ले लिया हैगा ते मसल्स भी काफी लूज हो गए ने। हालांकि सोहेल खान दे इस नवे लुक ते तारीफा घट ते उन्हां नूं ट्रोलिंग ज्यादा चलनी पई हैगी है। सोहेल खान दा जदों अलायंस विच आए ना शो दे विच तां उस तों बाद इक तम बहुत ज्यादा सुख गए तो कंपैरिजन वीडियोस बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ते छा गए कि पहला की सी ते हुण की बन गए हैगे ने। तां उस तों बाद उन्हां नूं काफी ज्यादा ट्रोल किया गया जिम मैं तुहानूं पहला दस्सिया सी ना कि बहुत सारे एक्टर्स हैगे ने तां उसी तरह दे नाल सोहेल खान कल्ले एक्टर नहीं हैगे जिन्हां ने वजन घट करके ट्रोलिंग जिन्हां ने चली हैगी है बहुत सारे हैगे ने उन्हां बारे दस्सदे आं तुहानूं एक एक करके पहला सुनो एक गीत।

0: QC Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, एक प्रॉब्लम हो गई।
6: क्या?
5: मॉडल नहीं आ रही।
6: क्यों
5: सर? आपकी मोबाइल पर तो फोन आया था कि वो नहीं आएगी।
6: ला फोन दे।

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ तां जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: एनर्जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम ते जीआर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। अगला जिहड़ा नाम हैगा वो है राम कपूर दा। टीवी दी दुनिया विच कामयाबी दे झंडे गड्डण दे नाल नाल राम कपूर ने फिल्मां विच भी खूब नाम कमाया हैगा। राम कपूर ने हालांकि इस पूरे समय दे दौरान अपना बॉडी वेट लगभग सेम रखिया। उन्हें दी पहचान इसे लुक दे नाल बन चुकी सी, पर अचानक जद उन्होंने वजन घटाया तो उन्होंने वजन तो घट गया, नाल ही चेहरा भी काफी अलग दिखन लग पिया। लोग उन्होंने इस नवे लुक दे नाल एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए ते काफी ज्यादा ट्रोल किया। हाल फिलहाल दे विच लॉकअप 2 दे विच
1: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स, घर हो या बिजनेस, हम सबके लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते चार छे संदेश अलग दिन बने हुए। अगला नाम है जी करण जौहर दा। बॉलीवुड दी दुनिया वे दा एक अजिहा नाम जिन्होंने ना सिर्फ सानू बहुत सारिया यादगार फिल्मा दितियां बल्कि हिंदी सिनेमा नूं कितों तो कितों पहुंचाया। करण जौहर नूं असीं शुरू तो एक खास लुक कैरी करते देखा है, पर फिर जद उन्हां ने अपना वजन काफी ज्यादा घटाया ना तां उन्हां ते ओजिम्स ते मुंजारो वर्गे ड्रग्स लैण दा आरोप लग्या। करण जौहर फंकी लुक दे नाल नाल बहुत पतले दुबले लुक दे लई काफी ज्यादा ट्रोल होए सी। खैर करण जौहर ट्रोल अक्सर हुंदे रहिंदे ने पर लुक नूं लैके पहली बारी होए सी।

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं, दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026। इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
1: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हां जी रेगो, फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 107.1 FM ते चार्चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला नाम है जी राजकुमार राव दा। ता बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव नू वी वार वार वजन घटाउण ते वधाउण दी वजह नाल ट्रोलिंग चलनी पई सी। वजह यह कि राजकुमार राव दी कद काठी उन्नी विशाल नहीं हैगी, मतलब इन्नी वड्डी नहीं हैगी कि ओ इस तरह दे ट्रांजिशन नू तो बाद भी नॉर्मल लगन। जद उन्होंने वजन कुछ फिल्मां दे लई घटाया तो काफी दुबले लगन लगे, फिर ज्यादा वधाया तो काफी मस्कुलर ते हैवी दिखन लगे। यही वजह है कि राजकुमार राव भी वेट लॉस दे लई ट्रोलिंग चल चुके आ।

0: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन
1: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।

नहीं तां सी एक्टर्स दी गल पर बहुत सारे एक्टर्स ते एक्ट्रेस स्पेशली अजिहियां हैगियां ने जिन्हां ने जदों वेट लूज कीता तां बकमाल लगण लग गया। उस विच सब तो पहला नाम तां हाल फिलहाल दी घड़ी तुहाडे जुबान ते शहनाज़ गिल दा आया होगा क्योंकि बिग बॉस दे विच जदों शहनाज़ गिल देखी सी तां बहुत बल्कि जी ते क्यूट सी क्यूट सी बट हुण वो हॉट हो गई है क्योंकि वेट लूज किया है तो बहुत ज्यादा स्लिम हो गई है। ज़रीन खान हो गई तो फिर सारा अली खान दी पुरानी ते नवीं वीडियो तस्वीर जब तुसी देखते हो तो पता लगता है कि डिजास्टर तो नहीं बहुत ज्यादा शानदार उन्होंने चेंज आया है। खैर तुहानू किहड़े एक्टर दा ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा चंगा लग्या कि ट्रोल नहीं होना चाहिदा सी ते किहड़ी एक्टर लगती है कि एक्ट्रेस कि ए पतली होके चंगी नहीं लगी तो जरूर सानू दस्यो जुड़ो साडे नाल। तां फिलहाल पहला ही की सुनो

0: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बन द्वारा अधिकारित।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तों वी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असीं होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असीं रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तों वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: के आलम में नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: हाउस। मैं तुहानू कहना कि जरूर जरूर जरूर जुड़ो साडे नाल, तां जुड़ो साडे नाल। रेडियो ब्रिसोनी 107.1 FM फेसबुक पेज है, जिथे brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। सारी जेड़ा भी अपनाओ साडे नाल गल्लां बातां जरूर करते रहो। साडा मकसद हैगा तुहाडे नाल जुड़न दा। तां जिवें तुहानू पहलां कहना कि दसो कि किहड़े एक्टर नूं ट्रोलिंग दा शिकार नहीं होना चाहीदा सी, कि उसदी ट्रांसफॉर्मेशन वधिया सी, ते किहड़ी एक्ट्रेस तुहानू लगदा कि उसनूं स्लिम होण दी लोड़ नहीं, बल्कि ही ज्यादा वधिया लगदी सी। जरूर दसो, जुड़दे रहो साडे नाल। ते मैं तां इही वादा करके चली आं जी कि कल करदे मुलाकात। रुख अपना ख्याल, सत श्री अकाल।
1: What does this fight mean to you to defend your title tomorrow night?
2: Yo, I'm gonna smash you, boy.
3: Kid.
2: Tomorrow night, I'm gonna smash you.

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ohna de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swedish Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करें प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए

0: 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड। एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कंपटीशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जाणो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: अपना नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल
2: 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन। ए विलेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Tanvir, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life, talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul ji nu on 0400 234 235, that is 0400 234 235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: है मेरी हमरत, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज, रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: बेटा, आंसू पी के भी जो मुस्कुराए वही तो जमाने को जीत पाए।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
2: मेरी एडवाइस है गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400644।
0: बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400644435 पर, या फिर ईमेल करें

0: कलेक्शंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

प्रिय श्रोतागण, परमानंद का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत मैं कर रहा हूँ संगीत सरगम नमत प्रोग्राम में। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। मौसम की खबर से प्रोग्राम का शुरुआत करूंगा मैं, उसके बाद स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम 7:15 बजे आज सुबह का सितारा, 8 से लेकर 8:15 बजे तक रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, नए गीतों के साथ ठीक 8:30 बजे संगीत सरगम नामक कार्यक्रम।

जी मित्रों, आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हैं। मैं हूं परमानंद। अब शुरू करने जा रहे हैं लाइव प्रसारण 6:32 पर संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। आपको बतला दें कि आज 10 तारीख है, 10 तारीख अक्टूबर सन 2026। फिजी द्वीप के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा दिन है क्योंकि आज फिजी डे है वहां पर, और वहां सोमवार को छुट्टी मिली है। एक गीत है मेरे पास जो मैं बाद में बजाऊंगा। फिलहाल चलते हैं मौसम के खबर की तरफ। मौसमी दफ्तर ब्रिस्बेन ने निम्न मौसम के खबर हमें प्रदान किए हैं। 5:17 पर ब्रिस्बेन में सूर्य उदय हुआ है, 5:53 पर सूर्यास्त होगा। वायु बहुत थमी हुई है और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने की उम्मीद कर रहे हैं। समय समय पर आकाश पर घटा छाई रहेगी, यहां वहां कुछ हल्की फुहारे बरसेंगी, अन्यथा मौसम साफ रहेगा। 27 रहेगा दिन में, रात्रि को 18, और इप्सविच में इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ 27 दिन में, रात्रि को 17, हवा का रफ्तार 13, और सनशाइन कोस्ट में भी आकाश पर घटा छाई रहेगी। 25 दिन में, रात्रि को 19, हवा का रफ्तार भी 19 किलोमीटर प्रति घंटा। गोल्ड कोस्ट में हल्की बारिश होने की संभावना है। 26 दिन में, रात्रि को 18, हवा का रफ्तार 16। फिर लेते चलते हैं फिजी द्वीप। नैनी में धूप निकली हुई है, 6:00 सूर्य उदय हुआ है, 6:09 पर सूर्यास्त होगा। धूप निकलने के साथ साथ 28 दिन में, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 13। लंबा समय बादल घिरे रहेंगे, और 30 दिन में, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 23। सुबह में हल्की फुहारें बरसेंगी, 26 दिन में, रात्रि को 23, हवा का रफ्तार 24। ओकलैंड में हल्की बारिश होगी, 19 दिन में, रात्रि को 13, हवा का रफ्तार 31, और 6:44 सनराइज, 7:32 सनसेट। वेलिंगटन में बादल घिरे रहेंगे, 17 दिन में, रात्रि को 9, हवा का रफ्तार 11, और मुंबई वेरी हॉट, 37 मैक्स, मिनिमम 27, 14 विंड स्पीड। अमृतसर में बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, वर्षा होगी, 30 रहेगा दिन में, रात्रि को 22, हवा का रफ्तार 16। नई दिल्ली में इसी प्रकार का मौसम होने के साथ साथ 32 दिन में, रात्रि को 23, हवा का रफ्तार 13, और 6:18 पर सूर्य उदय होगा, 6:00 सूर्यास्त होगा। तो ये थे कुछ स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के

मौसम की खबर। तो आप परमानंद के साथ हैं, संगीत सरगम नामक कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं मित्रों। और इसके साथ साथ सबको हम आज याद कर रहे हैं, जो लोग खास तौर से हमारा प्रोग्राम इस समय सुन रहे हैं, यहाँ लोकली या इंटर स्टेट या फिर देश विदेश में, क्या बोलें आगे, यही है कि सप्ताह आया चला गया, कितने रफ्तार में दिन आते हैं दिन चले जाते हैं, हम भी समय के साथ साथ बस चलते रहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया सा मुझे गीत कल मिल गया और मैं सोचा कि भाई आपको सुना दूं। इसके जो लिरिक्स हैं बहुत माने रखते हैं, मैट जेन्स इसे अदा किए हैं, सब तेरे हवाले बोल हैं, सुनाते हैं दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस गीत के साथ आनंद लीजिए।

0: तो मित्रों कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सब कुछ बयां इसमें कर दिया गया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम कभी कभी बहुत कुछ भूल जाते हैं और कभी कभी याद नहीं रखते हैं। और जीवन के बारे में जो भी करें, जैसे भी सोचें, सब कुछ चलता रहता है, मगर एक गीत मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप जो अचानक से मुझे मिला, मैंने सोचा चलो भाई मैं भी इसको बजा देता हूँ आपके लिए, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। चलें आगे बढ़ते हैं खबर के साथ।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवीं खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: जी मित्रों, 16 मिनट रह गए हैं 7 बजने में, और मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। सुबह का बेला है, हमारा मौसम तो बहुत प्यारा है, थोड़ा गर्मी रहेगी अन्यथा ठीक रहेगा। कुछ थोड़ा बहुत गार्डन में काम करने का दिन है, लोग उठ जाएं तड़के, क्योंकि अभी तो धूप बहुत जल्दी निकल जाती है, सूर्य उदय हो जाता है, बस पूजा पाठ करके लोग जुट जाते हैं, जो भी कर रहे हैं। आप जहाँ भी हैं, जिस साल में भी हैं, ईश्वर का कल्याण करें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या यही प्यार है फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी, उसी फिल्म का एक गीत है जिसे अलका याग्निक जी बाबुल सुप्रियो जी के साथ अदा कर रहे हैं, और आपको सुनवाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ।

0: मित्रों, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। गीत आप सुन रहे थे और आगे बढ़ते हैं। समय क्या रफ्तार में चलता रहता है ना, इसे हम रोक नहीं सकते।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: जो मित्रों, आप विज्ञापन सुन रहे थे और हम आगे बढ़ते हैं अगले गीत के साथ। अगला गीत जो है वो भी एक लोकप्रिय रोमांटिक गीत है। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू। ये कुमार सानू साहब अलका जी के साथ अदा कर रहे हैं आपके लिए।

जी मित्रों, तू जाने या मैं जानू, आप सुन रहे थे और इसी के साथ ही 5 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और परमानंद के साथ आप संगीत सरगम नमक कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। प्यारा सा गीत है इस बार, बहुत प्यारा। सब गाने अच्छे होते हैं मगर ये गाना उदित जी की आवाज में सुनिए आप।

0: जी मित्रों, ये था फिल्म दस्तक का बहुत ही लोकप्रिय गीत जो आप सुन रहे थे उदित साहब की आवाज में। और इसी के साथ ही हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बज गए हैं और आप रेडियो ब्रिजबानी आपकी अपनी पहचान सुन रहे हूँ। मैं हूँ परमानंद। यह संगीत सरगम नामक कार्यक्रम हम आपके लिए हर शनिवार को सुबह आते हैं, ठीक समय जानते हो ना आप कितने बजे? जी हाँ, 6:30 से 8:30 के बीच, और उस समय हम प्रोग्राम को लेकर आते हैं आपके लिए। और यहाँ पर हम कई तरह के प्रोग्राम करते हैं, कुछ बातें भी करते रहते हैं आपसे, और कुछ ऐसे भेंट वार्ता वगैरह जो आते हैं उनको भी आपके सेवा में पेश करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोग कॉल कर देते हैं और चुने चुन हुए गीतों को हम आपके सेवा में पेश करते रहते हैं। शनिवार है, मौसम प्यारा है, इसलिए अब लोग बहुत जल्दी खाट छोड़ देते हैं इस समय और कुछ सैर करने निकल जाते हैं, कुछ अपने बाग बगीचे में काम करते हैं, कुछ लोग अपने यार दोस्तों से दुनिया में किसी कोने में क्यों ना वो बसे हों उनसे बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात है, समय को अपने जो है बेहतरीन तरह से व्यतीत कीजिए। और हम आपको बस इतने ही बोलना था, थोड़े देर में राव जी आ जाएंगे, फिर 7:30 के थोड़े बाद में एक गीत मुझे मिला है फिजी के बारे में, जो फिजी में आप जानते हैं कि फिजी डे आज है, उसके विषय में थोड़ा जानकारी मैं प्रदान करूंगा, उसके बाद एक गीत आपको सुनवाएंगे। चलो एक खबर सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ें।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
0: जी मित्रों, ये विज्ञापन था और विज्ञापन के साथ हम आगे बढ़े जबकि 2 मिनट हुए हैं 7:00। अब मैं आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ पुराने गीतों की दुनिया में। पुराने गाने वो होते हैं जो दिल को छू लेते हैं, बीते हुए कल जो हुए थे, कुछ ऐसे यादें जिसको ताज़ा कर देते हैं, और कुछ ऐसे यादें हैं जो रुला देते हैं, हमें रुला भी देते हैं। कई हमारे यार दोस्त होते हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें सताने लगती है। हमने किसी की तरह का भूल चूक किया वो भी याद आने लगते हैं कि मैं ऐसे कर सकता वैसे कर सकता, लेकिन उस समय आप जो सोचे थे वही किए थे। पछतावा तो होता है लेकिन क्या करें, हाथ जोड़कर बस भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमें अपने आप को सुधारना है, जीवन में पॉजिटिविटी रखनी है, पॉजिटिव होकर बातचीत करना है, नेगेटिविटी ज़ीरो रखना है, हर व्यक्ति को एक सम्मान देखना है। जैसा भी व्यक्ति हो, जो भी कर रहा हो, चाहे बोलते ना स्ट्रीट स्वीपर हो या कोई किसान हो या कोई बहुत बड़ा अफसर है, एक बराबर सबको देखना, प्यार से बात करना, प्यार से मिलना, मुस्कुरा कर बात करना, खुशी खुशी किसी का दिन बना सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लता जी आ रही हैं उदित जी के साथ, और एक गीत बहुत खूबसूरत गीत है पूजा भट्ट पर्दे पर, तुम क्या मिले जाने जा।

0: जी मित्रों, बहुत प्यारा सा दो गाना था जो आप सुन रहे थे। और चलें खबर की तरफ। और पहला खबर है अतुल भरद्वाज जी का।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट विरे, अतुल भारद्वाज जी नो अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नो हैंडल करंज भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
0: और मित्रों, अब समय हुआ एक का और बहुत ही लोकप्रिय गीत का, जिसे अदा कर रहे हैं रफी साहब। और ये मैंने चुना हूँ फिल्म फिर वही दिल आया हूँ से।

0: जी मित्रों, लेकिन वो बात कहाँ, एक और गीत सुनाएंगे, एक विज्ञापन, एक और गीत, फिर हम राव जी को लेकर आएंगे।
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
0: इस समय मित्रों 7:15 बजे हैं रेडियो ब्रिजबानी की घड़ी में। एक गीत, उसके बाद हम राव जी को लेकर आएंगे। फिलहाल हम चलते ना, कहते कि हम भी बड़े जिद्दी आदमी हैं भाई, किसी को पसंद करते हो, छेड़छाड़ करते हो, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? लड़की कुछ तो कुछ कहेगी ना, जैसे लता जी ये कह रही हैं।

0: तो मित्रों क्या बात है, तड़पाओ के तड़पा लो। एक गाना जो मैं बजाया हूँ इसमें एक चीज और मैं किया हूँ। कभी कभी बोलते हैं ना किसी का थोड़ा सा उसको हौसला देना है, उसको कोई टेक्निक सिखाना है कि अगर किसी से प्यार करते हो और ब्याह करना चाहते हो, मुश्किल हो रहा है, परिवार की बात कर रहा हूँ, तो क्या कर दे। तो एक दिन मैंने इसी गीत को मैंने उनको सुनाया। मैंने बोला गीत में देखो ऐसे ऐसे है, और क्यों ना तुम एक गीत को छेड़ो, थोड़ा सा मर्द को बोला था। तो जाकर छेड़ा, उसका रिश्ता बन गया। तो आकर बोलता काम बन गया। मैंने बोला देखो क्या बात है। तो मित्रों हमारे साथ जुड़े हैं राव जी और रेडियो ब्रिजबानी पर। राव जी नमस्कार, स्वागत है रेडियो ब्रिजबानी पर।
1: नमस्कार। नमस्कार परमानंद जी। आज आप, मुझे ऐसे लगता है कि हर दिन आपका प्रोग्राम का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ते ही चला जाता है, और ये मेरे को बहुत पसंद आता है। मैं हमेशा सुनता हूँ शनिवार और रविवार के प्रोग्राम को। जतीश भाई भी लाते हैं गीत, चुन चुन करके लाते हैं। ये बहुत कहता है ना कि सोने में सुहागा, तो इस तरह का जो गीतों भरी कहानी आती है उस पर मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। सोचा है कि आपके प्रोग्राम में इसको पेश करूं
0: जी।
1: जब मैं हिंदुस्तान गया था 1983 में, वहां से लौट कर मैं लंबा सा शहर चला गया और वहीं मार्केट का व्यापारी कर रहा था, लोगों से चीज खरीदे और लंबा सा मार्केट में ही व्यापारी शुरू कर दिया। तो इस दौरान पर लंबा सा शहर से 27 किलोमीटर दूरी पर नसयालबो एक गांव बसा हुआ है, जहां मुख्यतः लोग गन्ना और धान की और साग भाजी की खेती करने के साथ साथ पशुपालन में भी लगे हुए थे। तो वहां पर मेरे को एक व्यक्ति भेंट हुआ। जब मैंने नसयालबो का दौरा किया तो यहाँ मेरी मुलाकात एक 92 वर्षीय श्री महिलाल से हुई। लंबादा मार्केट में बातचीत के दौरान श्री महिलाल ने मुझे अपने माता पिता और गिरमिट की दर्द भरी कहानी सुनाई। पहला बार भी उससे मेरा मुलाकात हुआ और इस चर्चा को मैंने थोड़ा ध्यान से सुना। उन्होंने कह रहा था कि मेरे पिता का नाम बलदेव और माँ का नाम धनपत था। मेरे चार भाई और दो बहनें थी। श्री महिलाल ने बताया कि उनके माता पिता को आरकाटियों ने गोरखपुर से बहका कर फिजी लाया था। वे गिरमिट काटने फिजी आए थे, उन्हें बहका कर फिजी लाया गया था कि यहाँ उन्हें बहुत पैसा मिलेगा। जब वो फिजी आए तो उन्हें गन्ना के खेतों में काम करने के लिए लंबासा भेज दिया गया। महिलाल मेरे को बता रहे थे, आप कहाँ के आए पूछ रहे थे। मैंने कहा कि मैं नांदी का हूं और अभी मैं लंबासा आ गया था क्योंकि मेरे बच्चे इधर ही पढ़ाई कर रहे थे। मेरे पिताजी हमें बताया करते थे कि उन्हें पक्की लाइन पर काम करने और पक्की लाइन बिठाने का काम सौंपा गया था। उनका काम था कि तीरी तीरी काट कर वहां मिट्टी पाट कर पक्की लाइन के लिए रास्ता बनाना। वे 6 बजे सुबह काम शुरू कर देते थे और कभी कभी शाम 6 बजे के बाद रात हो जाता था, जब तक कि उनका तार जो काम उन्हें सौंपा गया था मतलब समाप्त नहीं होता। तो बेचारे करते क्या, तो काम करना ही पड़ता था। तास खाना श्रीमय लाल ने बताया, उन्होंने अपना कहानी जारी रखा। विरोध करने वालों के साथ गोरे लोग बहुत बुरा सलूक करते थे। कोई गिरमिटिया ना काम करने से इनकार कर सकता था और ना ही उसके खिलाफ बगावत कर सकता था। अगर कोई ऐसा करता भी तो उसके खिलाफ कुलंबर लोग बहुत बुरा सलूक करते थे। जब मैंने इस कथा को सुन रहा था तो मेरे को लगन लगा कि वास्तव में हमारे माता पिता भी गिरमिट के समय में ही बहुत मेहनत कर रहे थे। गिरमिट के समय में काम के वक्त अगर कोई मजदूर आराम करता पकड़ा गया तो उन्हें कुलंबर चाबुक से मारते थे। मेरे पिताजी बताते थे कि अगर कोई कुलंबर से मूल चलाता था तो उसे सबके सामने बहुत बुरी तरह पीटा जाता था। परमानंद जी, इस कहानी को जब मैं सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गया। हमारे बाप दादों ने बहुत दुख काट कर अपने गिरमिट की अवधि पूरी की थी। श्री महलाल ने बताया कि 5 सालों तक गिरमिट की तकलीफ काटने के बाद ही उन्हें उनके माता पिता का दासत्व मुक्ति मिली। वे 6 बजे सुबह काम शुरू कर देते थे और कभी कभी शाम 6 बजे के बाद रात तक काम करते थे, जब तक कि उनका तास समाप्त नहीं हो जाता। इस दर्द भरी कहानी को जब मैंने सुना, क्योंकि मैं गया था लंबा था तो वहां पर व्यापारी शुरू कर दिया, तो अचानक महिलाल से मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा उम्र 92 वर्ष हो चुका है और उस समय मैं थोड़ा चलता फिरता आदमी था। तो इस कहानी को जब मैंने सुना तो मेरे को बहुत दुख लगा।
0: तो धन्यवाद है राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये इतना ही
0: ठीक है। अच्छा आपने सुनाया, अच्छा लगा सुनकर। धन्यवाद जी, मिलते हैं शनिवार को।
1: अच्छा,
0: तो मित्रों ये थे राव जी और कहानी सुना रहे थे कि कैसे कैसे दुख तकलीफ काटकर हमारे जो आए थे पूर्वज और क्या क्या क्या यहाँ किए और कितना मुश्किल का सामना करके अपने जीवन को व्यतीत किए, हमें पढ़ा लिखा कर मुकाम पर पहुंचाए। तो ये कुछ बातें हैं, थोड़ी देर में फ्री डे पर एक गीत है वो बजाऊंगा मैं। फिलहाल चले खबर के साथ।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Salman Khan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
9: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
11: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
12: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
13: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
13: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
0: और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें इस मजेदार गीत के साथ, जिसे अदा कर रहे हैं किशोरदा और साथ दे रही हैं लता जी.
12: बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
0: और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलें इस मजेदार गीत के साथ, जिसे अदा कर रहे हैं किशोरदा और साथ दे रही हैं लता जी.

जी मित्रों, लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना आप सुन रहे थे, और बहुत प्यारा सा डीवर था ये। और सात या 26 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, समय भाग रहा है। अब हम याद करें उन लोगों को जिनका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है। आपका जिनकी जन्मदिन है उनको बहुत बहुत मुबारक हो आपके जन्मदिन पर। शादी सालगिरह जिनकी आया है भाई, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो और भरपूर हो सब कुछ से, और आपका जोड़ी सदा सलामत रहे, ये कहना जरूरी है, ये मैं कह रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको मालूम है कि आज 10 तारीख है, और 10 तारीख अक्टूबर, आज का दिन जो है खास महत्व फिजी वासियों के लिए रखता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस हुआ था 10th अक्टूबर 1970 में, और उसके बाद रिपब्लिक हुआ 6th अक्टूबर 1987 में मिलिट्री कू के बाद, और फिर आज फिजी में आज लिए जो 10 तारीख का लिए उन्होंने रिपब्लिक डे या फिजी डे, और सोमवार को फिजी में नेशनल हॉलीडे यानी कि छुट्टी है सबको फिजी डे मनाने के लिए।

लेकिन दो तरह से मैं इसके बारे में सोचता हूं, व्यक्तिगत विचार है मेरा, कि कुछ लोग खुशियां मनाएंगे, कुछ लोगों को दुख पहुंचेगा इस बात से। क्योंकि फिजी में देखिए मिलिट्री कू हुआ, लोग कितने लोग यहां से वहां हो गए, कोई फिजी में रुक गया, कोई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका, कोई कनाडा, कोई कहां से कहां लोग चले गए, बिखर गए परिवार, माता पिता पीछे छूट गए, खेती बाड़ी जमीन रिजर्व होना, ये सब बहुत दुख सहे लोग। जैसे राव जी ने भी कहा गिरमिट के समय सहे, तो 1987 से लेकर अभी भी सह रहे हैं, दुख अभी भी हो रहा लोगों को, वो सब झेल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इतिहास फिजी का मैं बतला दूं कि फिजी का जो जन आबादी है करीबन 926,280 है, और इसमें आप जानते हैं कि जो मिक्स ऑफ पीपल हैं, कौन कौन रहते हैं। देखिए हमारे जो आदिवासी या फिजियंस जिसको हम कहते हैं वो 57% हैं, और जो इंडियंस हैं 38% हो गए, और बाकी जो है उसमें रोतुमन और यूरोपियंस हैं, मिक्स्ड पीपल। धर्म जो पालन बहुत करते हैं वो ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं, और उसके बाद हिंदू हैं 30%, और बाकी हमारे फिजी में इस्लाम भी बहुत लोग इस्लामिक हैं और जो मानते हैं इस्लाम धर्म को, और फिर इसके साथ साथ सिख धर्म है और छोटे छोटे और कई धर्म हैं जो लोग मानते हैं। और फिजी बहुत बड़ा आइलैंड है, जहाँ पर दो बड़े आइलैंड हैं, एक तो वितिलेबू है जहाँ पर सरकार का दफ्तर वगैरह सब कुछ है, पार्लियामेंट वगैरह वहीं से सब कुछ जो बनाते हैं नीति वगैरह वहीं से होती है, और वनुआलेबू दूसरा है। तो वितिलेबू का कैपिटल तो सब जानते हैं सुबह है, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नेंडी में है, और यहाँ पर ज़्यादा लोग यहीं पर निवास करते हैं। वनुआलेबू भी है, बड़ा लंबा सा है, और उसके बाद तबिनी और कई और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो करीबन 300 से ज़्यादा आइलैंड्स या टापू हैं फिजी में। तो यहाँ पर भाषा जो होती है लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं, और बहुत लोग पूछते रहते हैं मुझसे। यहाँ अंग्रेजी में सब कुछ होता है, लीगल लैंग्वेज इंग्लिश, उसके साथ साथ अगर आप पाठशाला में पढ़ रहे हैं तो हिंदी और फिजियन भाषा आपको पढ़ना है। तो तीन भाषा लोग सीखते हैं, अंग्रेजी, हिंदी और फिजियन। इसके साथ साथ उर्दू बहुत बोलते हैं, और पंजाबी भाषा भी लोग बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं, बहुत तरह के भाषाएं हैं जो लोग बोलते हैं वहाँ पर, गुजराती भी भाषा बोलते हैं, सब तरह के भाषा बोलते रहते हैं लोग वहाँ पर, और अच्छा लगता है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी और फिजियन भाषा मिलाकर एक सेंटेंस बोल देते हैं तो लोग चकित रह जाते हैं, क्योंकि वो मिठास है, कान में अच्छी तरह से जाता है जब सुनते हैं, अच्छा लगता है। और दूसरे लोग भी बोलते हैं अरे यार क्या बात है, ये सब तीन तीन शब्द तो ये बड़े अच्छे है, होते हैं। और देश बहुत, वैसे तो देश बहुत बढ़िया है घूमने फिरने के लिए, निवास करने के लिए बहुत लोग पसंद करते हैं। और अभी तो फिजी जो है बहुत डेवलप हो गया है, काफ़ी डेवलप हुआ है, और यहाँ का जीडीपी वगैरह बहुत अच्छा है। तो ये सब बातें फिजी के बारे में हैं। तो बहुत लोग घूमने फिरने जाते हैं, साढ़े तीन चार घंटे में आप ब्रिस्बेन से वहाँ उड़ान भर सकते हो, और फिर न्यूजीलैंड और फिजी जनरली एक ही टाइम जोन में है, लेकिन अभी वहाँ न्यूजीलैंड में डेलाइट चल रहा है, फिजी में डेलाइट सेविंग नहीं है इस साल, तो इसीलिए न्यूजीलैंड एक घंटा आगे फिजी से, और डोला यहाँ का करेंसी है। तो ये बतलाना था, मैं सोचा चलो आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ फिजी के बारे में। और आगे बढ़ते हुए शैली जी, थैंक यू आपका टेक्स्ट मैसेज के बारे में। और एक गीत मेरे पास आया है, उसे मैं बजाऊँगा, और चलिए सुनिए। ये मुझे इंजला पूरन जी, भाभी जी ने भेजी है, भेजे मुझे, थैंक यू भाभी, बहुत बढ़िया लगा, मैं लोगों को सुना देता हूँ। तो चलें सुने, अंग्रेजी में है, इतिहास है फिजी का।

0: तो मित्रों ये था फिजी डे सॉन्ग जिसे हमें प्रदान किए थे एंजला पूरन जी ने। थैंक यू वेरी मच भाभी, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी पसंद आया होगा थोड़ा सा जो मैंने बातचीत किए हैं। और चलो आगे बढ़ते हैं, विज्ञापन ले लेते हैं, विज्ञापन के बाद कुछ नए गीतों की तरफ हम चलेंगे। तो चलें एक खबर सुनते हैं।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
4: सासों की माला पे सिमरू मैं।
5: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
6: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
5: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302288009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: और जी मित्रों, और विज्ञापन के बाद अब हम चलते हैं फिल्म अपने का टाइटल सॉन्ग सोनू निगम जी की आवाज में आपको सुनवाते हैं।

0: जी मित्रों, अपने तो अपने होते हैं, आप सुन रहे थे, चलें खबर की तरफ और उसके बाद फिर दो गीत और बजाएंगे, फिर रानी क्रिएशंस का प्रोग्राम आ जाएगा। चलो सुनते हैं ये खबर।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो निगम जी की आवाज में, तेरे दिल का मेरे दिल का रिश्ता पुराना है।

0: ये मित्रों, तेरे दिल का मेरे दिल का रिश्ता पुराना है, आप सुन रहे थे। और गीत के साथ ही बस करीब पहुंच रहे हैं 8 बजे का, मगर उससे पहले चले खबर सुनते हैं और एक और गीत, फिर रानी क्रिएशंस का प्रोग्राम।
1: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
0: और मित्रों, आगे बढ़ते हैं, नया गीत है, चलें हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल जी का, इसे हम बजाएंगे, पूरा नहीं बज पाएगा, 8 बज जाएगा।

0: जय मित्र, इस गीत को यहां से आगे लेकर चलेंगे, लेकिन अब समय 8 बज चुका है। हम चलते हैं रानी क्रिएशंस के प्रोग्राम की तरफ और गीत जहां रोका है वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम विज्ञापन रानी क्रिएशंस का।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: प्रिय श्रोतागण, आपका तहे दिल से स्वागत है इस 15 मिनट का सेगमेंट में रानी क्रिएशंस का फैशन की दुनिया प्रोग्राम में। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम, जय श्री राम, केम छो, राम राम। हम भेंट कर रहे हैं, हैप्पी फिजी डे टू यू। और आपको बतला दें कि रानी क्रिएशंस का शॉप आज शनिवार है, खुला रहेगा सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक। कल रविवार है, कल खुलता है 10 से लेकर शाम को 3 बजे तक। तो ये टाइमिंग याद रखिए। और यहाँ पर हर प्रकार के कपड़े हैं, साड़ीज, ब्लाउजेज, अंडा स्केट्स, इसके साथ साथ संजे सजाने के लिए बहुत सारे ज्वेलरी, ओल्ड फीमेल आउटफिट्स, 17 आपके कपड़े, मर्दों के लिए भी कपड़े, बच्चों के लिए भी कपड़े हैं। शादी वगैरह कर रहे हैं तो वो भी शादी के जोड़ा वगैरह यहाँ सब मिल जाएगा आपको। और मैचिंग ज्वेलरी और ग्रूम्स का या दूल्हे का जूता, पगड़ी, और इसके साथ साथ स्टोल्स वगैरह भी, यानी कि हर प्रकार के एक्सेसरीज जो आपको जरूरी है रानी क्रिएशंस शॉप में मिल जाएंगे। तो अगर आप पहली बार ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अभी तक शॉप को नहीं विजिट किए हैं, तो 33 बलक्लावा स्ट्रीट उलंगेवा में आकर और देखें यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जहाँ से गाना छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूँ।

जय मित्रों, पिया जी मैंने प्रेम मोल लिया, ये शादी का गीत था। उम्मीद कर रहा हूँ मित्रों आपको पसंद आया होगा। कभी कभी ऐसे गाने मिल जाते हैं तो दिल बड़ा खुश हो जाता है जब ऐसे मिलते हैं, तो उसे हम बजा सकते हैं आपके लिए। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ऐसे गाने पसंद हुए होंगे। और शैली जी, आप प्रोग्राम सुन रही हैं और आपने सबको हैप्पी फिजी डे विश किए हैं, तो आपको भी धन्यवाद है। आपको भी हम फिजी डे विश कर रहे हैं यहाँ से, और आपके पूरे परिवार को भी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो अगला गीत है, ये वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, तुम सुबह तुम रब, मनप्रीत कौर और साथियों का गाया हुआ।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया। और यहाँ पर कपड़ों पर अप टू 50% ऑफ डिस्काउंट आपको मिल सकेगा, और बहुत ऐसे कपड़े हैं जिस पर आपको थोड़ा ज़्यादा सा डिस्काउंट मिल जाए। और कुछ स्टॉक लिया कर रहे हैं रानी क्रिएशंस अपने शॉप से, तो ये आप आकर खरीद सकते हैं यहाँ पर। चलो अगला गीत के साथ हम चलते हैं आगे, और एक गीत के बोल हैं मंजोगिया।

0: जय मित्रों, इसी गीत के साथ साथ रानी क्रिएशंस का साप्ताहिक कार्यक्रम फैशन की दुनिया यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक और सेगमेंट लेकर ठीक 8 से आपके सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। रिमेम्बर फॉर ऑल योर शॉपिंग नीड्स, इट्स रानी क्रिएशंस, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, उलंगेबा। कपड़ों पर अप टू 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा, शादी जोड़ा से लेकर एनीथिंग यू कैन बाय रानी क्रिएशंस। और यहाँ पर बहुत चॉइसेस है आपके, और चले आए बस अगर कपड़े वगैरह देखें, मन पसंद करें और फिर खरीद बीन करें, पैसा का भी बचत करें। अगले शनिवार तक आज्ञा दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वुलंगेबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
0: जी मित्रों, हमारे स्टूडियो में अब 8:15 बजे हैं और अभी से लेकर फिर 8:30 बजे तक हम संगीत सरगम प्रोग्राम को जारी करेंगे, चलते रहेंगे। चलें प्रिंस ज्वेलर्स का एक खबर सुनते हैं।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: हाँ दोस्तों, आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हुए चलें। फिर कभी गीत के बोल हैं, अरिजीत सिंह द्वारा अदा किया गया इसे।

0: जी मित्रों, ये धोनी फिल्म से एक गीत को लिया था मैंने, और चले विज्ञापन की तरफ। बजाते हैं देसी घी का।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है, और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au, और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
6: मेरे तुम्हारे सबके
7: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM, और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 kids under 16 years आर इंक्लूडेड, और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं, दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
0: मित्रों, खुशी की बात है, हमारे साथ जुड़े हैं पंडित सूरज चंद्र शर्मा जी। पंडित जी, सादर प्रणाम, स्वागत है आपका ब्रिजबानी पर।
8: शर्मा जी, आपको भी प्रणाम और सुनने वालों को नमस्कार। तो ब्रिजबानी के माध्यम से आपसे हम जुड़े हुए हैं, और परमा जी, जैसे आप पता है कि आज पितृपक्ष की यानी श्राद्ध पक्ष की आखिरी दिन है, और कल से नवरात्रि का माता की पूजा की शुरुआत हो जाएगी, और जो यानी 19 तारीख तक चलेगी। और खुशी की बात है कि इस साल सनातन धर्म में 15, 16, 17, 18, 19 यानी 5 दिन का माता की गुणगान होगा, भजन कीर्तन प्रसाद इत्यादि सभी कुछ प्रदान किया जाएगा, और ये प्रोग्राम 5 दिन को चलेगा, 15 से 19 तक। और फिर दीपावली महोत्सव वही सनातन धर्म 550 फिफ्टी रोड पर मनाया जाएगा 24 तारीख को। आप सुन रहे हैं तो अपने यार दोस्त को, रेडियो में भी एड आने वाला होगा कि सनातन धर्म का जो दीपावली जो सेलिब्रेशन या दीपावली हम लोग मेला इस साल कर रहे हैं, थोड़ा जल्द शुरू होगा 4 बजे से और 8 बजे रात तक। परमा जी
0: धन्यवाद पंडित जी, और श्रोतागण याद करेंगे थोड़े दिन में, शायद एक आपका विज्ञापन जो बन रहा है बन जाएगा, तो उस पर और जानकारी लोगों को मिलेगा। तो पंडित जी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय अभाव के कारण आपसे बहुत लंबा नहीं बात कर पाएंगे, तो हम फिर मिलते हैं। नमस्कार जी।
8: नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो प्रिय श्रोतागण, ये थे पंडित सूरज चंद्र शर्मा जी, और जैसे जैसे और त्यौहार नजदीक आएंगे तो इससे हम विस्तार से फिर बात करेंगे। तो चलें आखिरी गीत के साथ, इस गीत के बाद निवेदी आ जाएंगी टॉप 10 प्रोग्राम लेकर।

दोस्तों इस गीत को यहीं पर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि समय अब नहीं आगे जाने का, और निविया जी तैयार हो गई हैं, थोड़ी देर में वो आएंगी और आपसे मुलाकात फिर होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस खबर के साथ हम समाप्त करते हैं आज का ये संगीत सरगम नामक कार्यक्रम। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ संगीत सरगम नामक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले शनिवार को एक बार फिर परमानंद के साथ ठीक 6:30 बजे से एक और अनोखा संगीत सरगम नामक कार्यक्रम आप रेडियो ब्रिजवाणी के माध्यम से सुन सकेंगे। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम

कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आज निविया के साथ। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी वीकेंड मेरी तरफ से। वीकेंड आ गया है, शनिवार आ गया है, मस्ती आ गई है, धूम मचाने हम भी आ गए हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, गाने भी आ गए हैं जो कि ट्रेंडिंग है, तो धूम तो अपने आप ही हो जाएगी। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आ गए हैं हम आपको एंटरटेन करने के लिए, आपके लिए प्लानिंग करने के लिए और आपको बताने के लिए क्या क्या आप देख सकते हैं इस हफ्ते अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 10वें नंबर के गाने के साथ, क्योंकि गाने ट्रेंडिंग हैं और सिर्फ 10 ही हैं, तो 10वें नंबर के गाने से शुरुआत होगी, जो कि है फराटा फ्रॉम द मूवी हैवान। सैफ अली खान और अक्षय कुमार की ये मूवी अभी कुछ वक्त पहले ही रिलीज होकर हटी है, कुछ थिएटर्स में अभी भी लगी हुई है, बाकियों से ये उतर चुकी है। शुरुआत करेंगे 10वें

फराटा मार के, जी हाँ फराटा मार के डांस आप भी कर दीजिएगा, फराटा मार के। क्या बात है, गाने एकदम जबरदस्त बना देते हैं कभी कभी लोग। मतलब गानों की वर्डिंग्स जो है वो बड़ी फनी होती है, लेकिन उनकी वाइब जो है वो उतनी मजेदार होती है। मतलब ऐसे गाने जो बीट शुरू होते ही आपको डांस करने पर मजबूर कर दे, ऐसे तो होने चाहिए, क्योंकि यही गानों से तो हमारे फंक्शन सजते हैं, हमारी फेस्टिविटीज सजती हैं और हमारा वेडिंग सीजन भी सजता है। सो ऑफकोर्स ये गाना वैसा ही है, मजेदार सा नचाने वाला, और वेडिंग सीजन आ रहा है उसके लिए एकदम परफेक्ट। चलिए ये था हैवान का गाना, अगले गाने की तरफ चलते हैं जो कि है बहुत ही खास गाना। अब ये गाना जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन इसको रिक्रिएट किया गया है एक बहुत ही प्यारी सी सिंगर के द्वारा, जी हाँ, और उनका नाम है कुंवर बरार। जी हाँ, उन्होंने इसको गाने की कोशिश की है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसे गाया है, और ये इंस्टाग्राम से फिर से इतना ज्यादा फेमस हो गया कि हमारी लिस्ट तक भी ये पहुंच गया है। इनफैक्ट हम इसे अपने प्रोग्राम में भी प्ले कर चुके हैं पहले। बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही खूबसूरत वर्जन, और अगर आप लोग पंजाबी जानते हैं तो शायद आपको समझ भी आ जाए, लेकिन अगर आप पंजाबी नहीं भी जानते तो भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इनकेस आपने इसे नहीं सुना है तो फिर आप सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, बिकॉज देयर इज नो अदर वे कि आप सोशल मीडिया चलाते हैं और आपने ये गाना नहीं सुना, क्योंकि ये वायरल हो गया है।

गाना है, क्या ही गाना है। नो वंडर ये इतना ज्यादा हिट हो गया, इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। मतलब हर कोई दूसरी रील देख लो, जल रे डोंट वरी मुझे पता है आप लोग डर जाओगे अगर मैंने इसे गाना शुरू कर दिया, बट कहने का मतलब ये है कि हर दूसरी रील में ये गाना है और मैं तो इसे गाने की कोशिश भी कर रही हूँ, पर डोंट वरी बाथरूम में ही कर रही हूँ, उसके बाहर आके मुझे लोगों के कानों से खून नहीं निकालना। सो आई एम नॉट डूइंग इट बाहर, आई एम ओनली डूइंग इट बाथरूम। और बाथरूम में तो गाने का सबको हक है, पर खुरदार उससे करने से तो आप भी मुझे नहीं रोक पाओगे। जी हाँ, इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना हम आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, विच इज दो नंबर इन। नाउ दिस सॉन्ग इज वेरी वेरी वेरी वाइबी, मतलब बेसिकली ये गाना हरियाणवी में है, लेकिन आपको हरियाणवी नहीं भी आती है तो आप इसके म्यूजिक पे ही ढिंचक ढिंचक एंड ढिंचक करना शुरू कर दोगे। एंड व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि आप वाइब करना शुरू कर दोगे। जी हाँ, ये गाना इतना ज्यादा जबरदस्त है, गाने का नाम है दो नंबरी, मतलब बंदा एक नंबर का है लेकिन उसका धंधा जो है वो दो नंबर का है। सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji ho expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, इसी के साथ वीकेंड का वार है और हमारा जो है ये प्रोग्राम भी चल रहा है। मतलब क्या चाल है इसकी भी। जी हाँ, बढ़िया से गाने, बढ़िया सी बातें और बहुत सारे जो मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सो बेसिकली सारी की सारी अच्छी चीजें और ऊपर से काम का प्रेशर ना हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, राइट? सो वीकेंड हमें प्यारा भी इसीलिए क्योंकि काम का प्रेशर नहीं, बॉसेस के चिक चिक नहीं, पिक पिक नहीं, कुछ नहीं। मतलब मस्ती से सोना है, मस्ती से उठना है, मस्ती से खाना है, मस्ती से पीना है, किसी चीज का रश नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ जल्दी करो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सब कुछ एकदम सुकून से कर सकते हो, तो सुकून से हमारे इस प्रोग्राम को सुनिए क्योंकि अब हम आपके लिए आगे जो गाने लेकर आने वाले हैं वो और भी ज्यादा जबरदस्त हैं। क्योंकि ये जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूं वो है मूवी द विवान का और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया है और ये अलग सी मूवी है। जी हाँ,

जी हाँ, तो समझो ना और सुन लो ना भाई, हमने समझ भी लिया है और सुन भी लिया है। सो डोंट वरी मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया जी, क्योंकि आपकी मूवी देखने के लिए हम जा रहे हैं। जी हाँ, मतलब वही है जो मैं कह रही हूँ, आपको अगर मूवी देखनी है द वी वन, जी हाँ, तो आपको जाना होगा थिएटर्स में, क्योंकि ये लग गई है थिएटर्स में। नाउ इट्स अ वेरी मिस्टीरियस मूवी, जी हाँ, मिस्ट्री से भरी हुई है, साथ में साइफाई और थोड़ी सी हॉरर, ये सारे के सारे जो जॉनर्स है ये आपको सर्व करने वाली है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, वेल आप ट्रेलर देखिए खुद ही समझ जाएंगे। ऑल्दो सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग के फैन बहुत लोग हैं और कुछ लोग नहीं भी हैं, सो या चॉइस इज योर्स, देखिए जरूर, क्योंकि इस बार मूवी काफी दिलचस्प लग रही है। मुझे बताइए कि आप इस मूवी को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, बट फर्स्ट गो वॉच द ट्रेलर, बिकॉज देन ओनली यू कैन नो कि आप देखना चाहते भी हैं या नहीं। चलिए इसी के साथ यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूं, विच इज फ्रॉम द मूवी राना बली, और इसमें जबरदस्त रियल लाइफ कपल है जो रील में आया है और ये लोग जल्द ही आने वाले हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, विच इज 16th of October, राना बली मूवी रिलीज हो रही है, और उससे पहले उसका ये गाना काफी धूम मचाए हुए है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपको बताने का क्या क्या लगा हुआ है थिएटर्स में। सबसे पहले दृश्यम 3 के बारे में बात कर लेते हैं। छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है, मतलब कमाई की हद नहीं है, वैसी कमाई कर रही है दृश्यम 3। एंड आपको ये भी बता दें कि दृश्यम 3 जो है वो फाइनल पार्ट है दृश्यम सीरीज का। जी हाँ, दृश्यम सीरीज, जिसमें कि अजय देवगन, विजय सलगांवकर का कैरेक्टर निभा रहे हैं, श्रेया सरन उनकी बीवी का कैरेक्टर निभा रही हैं, इशिता दत्त उनकी बेटी का कैरेक्टर निभा रहे हैं, और साथ में उनके दुश्मन ब्यूटीफुल यानी कि तब्बू उस लड़के की मां का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जिससे अपेरेंटली विजय ने मार दिया है। लेकिन कोई ये प्रूफ नहीं कर पाता है कि कहां है वो बॉडी जिसे विजय ने मार कर कहीं ठिकाने लगाया है। नाउ ये स्टोरी जो है वो चल रही है 2015 से। जी हाँ, 2015 में पहली दृश्यम आई थी और उसने भी बहुत अच्छी कमाई की थी उस वक्त के हिसाब से। 2022 में दूसरा पार्ट आया, उसने भी बहुत ही अच्छी कमाई की, और ये फाइनली जो तीसरा पार्ट है ये तो भर भर के कमाई कर रहा है। एंड देखकर पता चल रहा है कि दृश्यम का जो लिटरली वेट किया है लोगों ने वो बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही बेसब्री से किया है। एंड दैट इज द रीजन लोग भर भर के थिएटर्स में पहुंच रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा कि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है मूवी, और डेफिनेटली अजय देवगन और दृश्यम 3 की सारी सीरीज को और सारी कास्ट को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि उनके लिए ये साल काफी अच्छा रहा। जी हाँ, यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला गाना मैं आपको सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, विच इज रंगियारा फ्रॉम द मूवी हैवान। और दृश्यम 3 के अलावा कौन कौन सी मूवीज लगी हुई हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन दृश्यम 3 देखने के लिए आप जा सकते हैं थिएटर्स में।

जी दोस्तों, ये गाना भी आपको डांस करने पर मजबूर करता है, लेकिन ना सिर्फ डांस करने पर मजबूर करता है बल्कि फेस्टिविटीज मतलब खुशी में डांस करने पर मजबूर करता है, जैसे आप कहीं सेलिब्रेट कर रहे हो चीज। जी हाँ, और सैफ अली खान इसमें बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बिकॉज मैंने जैसे कहा आपको कि हैवान का ये गाना है। और इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली मूवीज में आपको बताने के लिए तैयार हूं। सो दृश्यम 3 के अलावा द V1 फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट लगी हुई है, जैसे मैंने कहा था सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इसमें आपको नजर आने वाले हैं, और साथ में जॉनर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर सब कुछ मिलने वाला है एक साथ। जी हाँ, इसी के साथ प्रेम कीटाणु, अगर आप नॉर्मल सी हल्की फुल्की सी कॉमेडी और रोमांस देखना करते हैं विच इज रोम कॉम, तो आपके लिए मूवी है विच इज प्रेम कीटाणु, और इसमें आपको मिलने वाली है आफिया सैयद, वीर पहाड़िया एंड अपार शक्ति खुराना, ये भी आप देख सकते हैं। अगेन, इसमें से कोई भी मूवी इस हफ्ते रिलीज नहीं हुई है अभी तक के लिए, ये पहली की मूवीज है जो पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी। जी हाँ, इसी के साथ मिर्जापुर द मूवी अभी भी लगी हुई है, मिर्जापुर के गाने भी ट्रेंड कर रहे हैं, बंदा एक नंबरी दो नंबरी, जी हाँ वो इसी का ही गाना था। सो मिर्जापुर यानी कि पंकज त्रिपाठी, गुड भैया और वो सारे के सारे भैया जो है वो आपको नजर आने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखी है मिर्जापुर द सीरीज, फिर पहले ट्रेलर देखिए और फिर ही जाइएगा मूवी देखने, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कर्सिंग है और बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है देन डोंट गो फॉर इट, एंड इट्स नॉट द काइंड ऑफ मूवी यू विल वॉच विद योर फैमिली और किड्स, सो या दैट इज ऑल्सो द केस, गो विद योर बडीज, गो विद योर फ्रेंड्स एंड गो अलोन, दैट इज द ओनली काइंड ऑफ मूवी दिस इज। जी हाँ, इसी के साथ आपको मिलने वाली है एक और मूवी जो कि है ऑफ कोर्स हनुमान अंश। जी हाँ, हनुमान अंश की मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर ली है, इससे ज्यादा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक प्रोड्यूसर जो पहली बार मूवी प्रोड्यूस कर रही थी, वो उनकी प्रोड्यूस गिरी कामयाब हो गई। आप लोग बोलोगे व्हाट इज दिस प्रोड्यूस गिरी, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो हम अपने आप से भी डालेंगे, राइट। सो यहां पर पहली बार अपनी जिंदगी में मूवी बनाई, पहली बार प्रोड्यूसर बनी, जो एक्टर हैं नीम करोली बाबा का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका भी जो कैरेक्टर है जो प्ले कर रहे हैं वो पहली बार हीरो बने। जो यहाँ बैक स्टेज काम किया करते थे असिस्टेंट के तौर पर, उन्हें हीरो बना दिया गया क्योंकि हीरो ने मूवी छोड़ दी थी अपेरेंटली, और कोई नया हीरो नहीं मिल रहा था, बजट कम था। लेकिन अब जितना बजट उन प्रोड्यूसर और उस प्रोडक्शन हाउस के पास है, मुझे नहीं लगता उतना और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के पास है, बिकॉज मूवी जो है वो लिटरली 400 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है। या दैट इज द पावर ऑफ नीम करोली बाबा जी एंड द मूवी हनुमान अंश। इसी के साथ हॉलीवुड मूवीज में क्या क्या है थिएटर्स में लगा हुआ, आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट, लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और बढ़िया सा गाना जो कि है ये प्रेम। जी हाँ, ये प्रेम, आगे की बात इन्हीं को करने देते हैं, ये प्रेम मोल लिया, ऑफकोर्स ये हमारी फेवरेट श्रेया घोषाल की आवाज में, आयुष्मान खुराना और शर्वरी बाग की मूवी का गाना।

जी हाँ दोस्तों, जल्द ही रिलीज होगी ये वाली मूवी भी 27 नवंबर को, और इसमें आयुष्मान खुराना और शर्वरी बाग आपको एंटरटेन करने वाले हैं। और ये सूरज बड़जात्या की वो क्लासिक मूवीज में से एक है जो फैमिली को लेके बनाई जाती है। सूरज बड़जात्या हैज ऑलवेज बीन फेमस फॉर दिस जॉनर, जो कि फैमिलीज में बहुत सारे लोगों को ज्वाइंट फैमिलीज वाला कॉन्सेप्ट लेके उसमें प्यार और रोमांस जो है वो जगाना, या दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। और इसमें लिटरली जो वाइब है वो अर्ली 2000s की है। जी हाँ, वैसे ही जैसे कि वो पहले बनाया करते थे। इनफैक्ट जो गाना आपने सुना इसकी भी तो वाइब वैसी ही है, राइट? चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हॉलीवुड में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा थिएटर्स में। सबसे पहले तो आप अपने बच्चों के साथ लेकर जा सकते हो, देखने जा सकते हो मूवी विच इज डोरेमोन कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल। जी हाँ, डोरेमोन किसको पसंद नहीं है, नोबिता किसको पसंद नहीं है, जी हाँ मतलब सुजुका किसको पसंद नहीं है, हम सबको पसंद है, राइट? और बच्चों को तो कुछ ज्यादा ही पसंद है। सो ऐसे में डोरेमोन कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल जो है वो लगी हुई है और काफी अच्छे रिव्यूज हैं इस मूवी के। गो टेक योर किड्स एंड वॉच द मूवी एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ जो आपको बच्चों के साथ नहीं देखनी है बट हॉलीवुड मूवी है वो है वैरिटी। जी हाँ, अब ये वैरिटी है या वैरायटी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी स्पेलिंग्स है VERITY। और इसमें एन हाथवे, डकोटा जॉनसन और बहुत सारे जबरदस्त लोग, साथ में जेरेमी क्रॉफोर्ड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज में डकोटा जॉनसन एंड एन हाथवे बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री जो है वो दिखा चुके हैं। मतलब इन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना मजेदार है कि जहां भी इंटरव्यू करने जा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही हैं, वहां पर मजे आ जाते हैं लोगों को जो वहां पर बैठे हुए हैं। एंड ऑफकोर्स हम उसे टीवी पर देख रहे हैं या फिर ऑफकोर्स अपने फोन्स में देख रहे हैं, डिजिटली देख रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो एक पेयर होता है ना जो बहुत ही जबरदस्त ह्यूमर का होता है, दोनों मतलब परफेक्टली मैच्ड लोग होते हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमर, वैसे ही एन हाथवे एंड डकोटा जॉनसन लगी हुई है। एंड एन हाथवे इज हेविली प्रेग्नेंट राइट नाउ एंड शी स्टिल इज डूइंग everything, like she is making movies, she is acting or she is doing press conference also, she is doing all of it. जी हाँ, इसी के साथ एक और मूवी जो आप देख सकते हैं वो है हार्ट ऑफ द बीस्ट। नाउ दिस मूवी इज वेरी स्पेशल बिकॉज ये है एक्शन एडवेंचर ड्रामा थ्रिलर और ये वही स्टोरी है जो आपको लग रहा क्या है कि ये है। जी हाँ, सो एक प्लेन क्रैश होता है, उसमें एक जो नेवी सील ऑफिसर होता है वो फंस जाता है अपने रिटायर्ड डॉग के साथ एक जगह पर, एक आइलैंड पर, जहां पर लिटरली घूमना फिरना, अपने आप को वाइल्ड में जिंदा रखना जरूरी है और मुश्किल भी बहुत ज्यादा है। सो ऐसे में अपने डॉग के साथ वो कैसे इस लाइफ को अनफोल्ड करेगा, कैसे उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को वो दूर करेगा, कैसे उनसे वो निपटेंगे दोनों डॉग एंड नेवी ऑफिसर, वो सब आपको पता चलने वाला है। सो ये भी आप देख सकते हैं, तीन मूवीज जिसमें से एक आप अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं एंड दैट इज डोरेमोन। सो वॉच इट एंड लेट मी नो आपको कैसी लगी। इसी के साथ एक और गाना आप सबके लिए फ्रॉम द मूवी प्रेम कीटाणु, कहो तो।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है टॉप 10 हॉट 10 मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों फाइनली हम नंबर 2 सॉन्ग के ऊपर आ गए हैं, मतलब प्रोग्राम खत्म होने वाला है और नंबर 1 सॉन्ग भी आने वाला है। जी हाँ, सो जो नंबर 2 गाना है वो है मिर्जापुर द मूवी का। अगेन जैसे मैंने कहा, मूवी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है अभी तक और अभी भी कर रही है, और उसके गाने हमारी लिस्ट में और बाकी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर, म्यूजिक स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स पर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, और ये है वारूं फॉरएवर। जी हाँ, मिर्जापुर द मूवी का गाना सुनते हैं। इसको दूसरे नंबर का गाना है इस हफ्ते की टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट का।

भाई काला टीका तो मुझे लगता है सबको ही लगा लेना चाहिए क्योंकि नजर इज रियल, ऐसा मैं नहीं बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली कहना है लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, कि नजर लगने का डर रहता है। तो हमेशा अपने आप को क्लींस करना बिल्कुल मत भूलिए। जब भी आप कुछ अच्छा बन के जाते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, घर आकर अपनी एनर्जी को प्योर रखिए और क्लीन कीजिए। जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए। नंबर वन सॉन्ग इस हफ्ते का है हनुमान अंश का गाना पार्वती। जी हाँ, अब पार्वती गाना जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। एंड कैन यू इमेजिन, ये गाना जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली सेकंड नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। जी हाँ, सेकंड नंबर पर, एंड इट्स स्टिल ट्रेंडिंग रियली वेल। जी हाँ, सो पार्वती गाना है और ये है हनुमान अंश मूवी का गाना, जिसने लिटरली डार्क हॉर्स बनकर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। गाना सुनिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए वीकेंड। बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं इवनिंग वाइब में मंडे को।

0: मिलता है आपको ये पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? ये भक्ति करनी है ना
1: तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।